लीजिए अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रमों की जानकारी झरोखा में। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। रामचरितमानस गान में आप सुन रहे हैं किष्किंधा कांड भाग 272 आज प्रसारित होगा। संगीत सरिता ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:45 पर और पुनः शाम को 6:45 पर, जिसके अंतर्गत श्रृंखला आप सुन रहे हैं वर्षा चौमासा, कलाकार गायिका शुभा मुद्गल, इसका भाग 6 प्रसारित होगा, प्रस्तुति कांचन प्रकाश संगीत की। भूले बिसरे गीत सुबह 7:00 7:30 पर हम है राही प्यार की। आठ बजकर 15 पर आप सुनेंगे त्रिवेणी, आलेख एवं स्वर सोनाली पाठक का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की, और ये कार्यक्रम आप पुनः दिन में 2:00 सुनेंगे। नए गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक सुबह 8:30 पर और रात को 8:15 पर। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा फिल्मकार विशाल भारद्वाज पर, प्रस्तुति रमेश गोखले की है और ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर और पुनः रात 9:30 पर। पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान में सुनिएगा लेखक निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का भाग 1, संपादन सहयोग मनीषा सिंह का, प्रस्तुति तेजश्री कामले की, सुबह 10:00। ग्यारह बजे रंग तरंग, 12:05 पर यादों की महफिल और 1:00 सुरीला सफर। पर सदाबहार नगमे, 3:00 सखी सहेली के अंतर्गत सुनिएगा लुप्त होती पारंपरिक।

पारंपरिक कलाएं कहानी पद्मश्री के अंतर्गत कोलाकयील देवकी अम्मा पर्यावरण विद की कहानी और मुझे कुछ कहना है वो चिट्ठियों का जमाना, उपयोगी टिप्स बारिश में घर की सफाई। संवादक हैं मंजरी वर्मा और आरती श्रीवास्तव, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। शाम 4 बजे हेलो फरमाइश, संवादक मंदाकिनी जोशी, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। शाम 5 बजे छाया गीत, तराने नए पुराने, 5:30 पर। 6:30 पर आप सुनेंगे झरोखा और 6:35 पर संध्या रंजन। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला शाम 7 बजे। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए, सिकंदर खरबंदा से रेणु बंसल की बातचीत, प्रस्तुति जुबैर खान। 8:00 हवा महल में सुनिएगा प्रहसन खुसुर फुसुर, लेखन सोमनाथ नागर का है, निर्देशन कमल दत्त का। आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:00। दस बजे छाया गीत आलेख एवं स्वर नेहा आगरकर का, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। 10:30 पर और 11:00 रंग तरंग कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

तो श्रोताओं, ये थी आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आप सुन रहे थे झरोखा। नीचे प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान किष्किंधा कान भाग 272।

सुग्रीव के राज्यारोहण तथा बालीपुत्र अंगद के युवराज घोषित होने के पश्चात श्री राम तथा लक्ष्मण प्रवर्षण पर्वत की एक गुफा में निवास करने लगे हैं। ऋतुचक्र अपनी मंथर गति से घूम रहा है। शरद ऋतु के आगमन के साथ ही राजा, तपस्वी, व्यापारी तथा याचक, जिनका दैनंदिन कार्यकलाप वर्षा के कारण अव्यवस्थित हो गया था, पुनः आरंभ हो गया है। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, वे शरद ऋतु के आगमन पर वैसे ही नष्ट हो गए हैं जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम समूल नष्ट हो जाते हैं।

0: संगीत सरिता के श्रोता मित्रों नमस्कार। शुभा जी आपका स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: वर्षा चौमासा श्रृंखला के अंतर्गत कल आप बता रही थी कि राग बिहाग में तीज का जो पद,
1: जी हाँ, ख्याल की बंदिश के रूप में तो इसे सिखाया ही जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे बंदिश की ठुमरी कह के भी गाते हैं। तो अब देखिए, एक ही पद को ख्याल गायक भी गाते हैं, बंदिश की ठुमरी भी कह के गाया जाता है, और भक्ति पद भी है, यानी एक तरह से इसे भजन भी कहा जा सकता है, क्योंकि मंदिरों में राग सेवा के दौरान गाया जाता है।
0: जी, वर्षा काल में जितनी तीज के साथ हम ये भी कहते हैं कि तीज त्योहार,
1: जी बिल्कुल,
0: तो और भी त्योहार आते हैं,
1: जी बिल्कुल,
0: उनके बारे में भी हम बातचीत करेंगे ना,
1: जरूर जरूर करेंगे।
0: लेकिन आज आप
1: क्या क्या नहीं किया देखिए श्रृंखला में, हमने शादी करा दी, लग्न लगवा दिया, फिर तीज मना ली, तो सब कुछ करेंगे धीमे धीमे।
0: तो आज आपने क्या सोचा है?
1: मैं सोच रही थी कि तीज त्योहार की बात चल रही है, तो आपने कहा कि अलग अलग जो संप्रदाय हैं अलग अलग जगहों पे तीज का भी मनाना थोड़ा सा फर्क इधर उधर होता हो, लेकिन मूल रूप से एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो ये एक और पद मुझे मिला, वल्लभ संप्रदाय में भी गाया जाता है, जो अन्य वैष्णव संप्रदाय हैं उनमें

0: भी कुछ गौड़ीय संप्रदाय इत्यादि में के मंदिरों में भी ये गाया जाता है। और ये एक संग्रह में मुझे मिला जिसमें कि मेहंदी सिंधारे के पद के रूप में इसे दिया गया है। और सिंधारा वो होता है, वो जो उत्सव मनाने के लिए सारी महिलाएं इकट्ठी होती हैं, शगुन के रूप में जो साड़ी चूड़ी श्रृंगार का सामान इत्यादि दिया जाता है वो एक सिंधारा होता है। और सब लोग मिलके झूले पे बैठ के पकवान खा के एक मौज मस्ती का त्योहार ये है, वो मेहंदी सिंधारे के पद के रूप में मुझे ये मिला। और इसे मैंने तिलंग राग में निबद्ध करके गाने का प्रयास किया है। ये ख्याल के रूप में नहीं है, ना कि ठुमरी के रूप में है। मेरी चेष्टा ये रही है कि जो साहित्य है उसमें जो एक मस्ती है, एक अल्हड़पन है और एक निवेदन है, वो प्रस्तुत करने का प्रयास है। तो आपको बोल सुनाऊं थोड़े से?
1: बोल भी सुनाइए और तिलंग का रूप भी थोड़ा समझाइए।
0: जरूर जरूर। तो ये खमाज जो थाट है उसका एक राग है ये, और इसमें ठुमरी इत्यादि उपशास्त्रीय संगीत के अन्य गीत प्रकार इसमें काफी मिलते हैं
1: जी।
0: तो इसका स्वरूप कुछ इस प्रकार है।

0: ये तिलंग का स्वरूप माना जाता है और इसी में मैंने ये पद इसको ढालने की कोशिश की
1: तो
0: है।
1: पद भी बताइए बोल।
0: पद कुछ इस प्रकार है, मैया अब हिंडोर गढ़ावो।
1: वाह, सावन के झूले पड़े।
0: हाँ, तो माता से अनुरोध है कि अब आप झूला डलवाइए, हिंडोरा गढ़वाइए। मैया अब हिंडोर गढ़ावो, लेकिन ऐसा वैसा नहीं कि बस ऐसे ही कहीं एक टायर लगा के जैसे बंध जाता है, वैसा नहीं। सोनी सुघर बुलाए नगर के, यानी जो शहर का प्रतिष्ठित सुनार है उसको बुलाइए आप।
1: हाँ, नगर
0: सोनी,
1: का।
0: हाँ, सोनी सुघर बुलाए नगर के रतन अमोल जड़ावो। तो रत्न जटित हिंडोला,
1: हिंडोले में। हाँ, हाँ,
0: हाँ। और उसके लिए बाकी तैयारी कैसी होगी, क्योंकि झूले पे यूं ही हम ऐसे फटे हाल तो नहीं बैठ जाएंगे। तो गहरे रंग चुनरी सारी छीपन पे जो रंगावो, विशेष रूप से उसे छपवाया जाए, रंगवाया जाए, ऐसी साड़ी आप गहरे रंग की तैयार करवाइए। और केवल मेरे लिए नहीं, कन्या गोप जिति मो साथिन,
1: वाह वाह,
0: सादर सब पहिरावो।
1: क्या बात है। हाँ,
0: तो
1: हाँ,
0: सब जो कन्याएं हैं, मित्र हैं, सहेलियां हैं, सब उनके लिए गहरे रंग की विशेष छपाई के साथ वो साड़ी आप तैयार करवाइए। ये सावन मन भावन रानी मोको उबटी नहावो। तो उबटन लगा के जो स्नान होता है वो बहुत जरूरी है, उबटी नहावो। सब सखियन में सुंदर लागो रच सिंगार बनावो।
1: वाह, सब सखियों को छपाई की हुई सुंदर साड़ी गहरे रंग की तो चाहिए, लेकिन सब सखियों में इसको सुंदर भी दिखना है सबसे ज्यादा।
0: सबसे ज्यादा तो अब तक ब्यूटी पैजेंट नहीं होता था, पर ऐसा ऐसा इच्छा रहती थी कि सबसे सुंदर हम नजर आए। और फिर क्या पकवान क्या होंगे उसका भी संकेत इसमें मिलता है। पुआ करी, जो पुआ होता है
1: मालपुआ,
0: जी, पुआ करी कीरति मैया गुझा मेवान भराओ। मेवा से, जी, मेवा से भरी गुजिया वो बनेगी। अधिक राचनी, जो ज्यादा रचे, अधिक राचनी मेहंदी सो ले तुम मोकरन लगाओ। वैसी वाली नहीं जो कि ऐसी हल्की धुंधली सी आ जाए, पर जो अधिक रचे गहरी, वैसी गहरी मेहंदी वो चाहिए मुझे। और फिर झूले का वर्णन है, मानिक चौक पौरी के आगे तहां ले खंभ रुपावो। और जो उसके खंभे बने हैं उस पे मरुवे और मयार जो डांडी चित्र विचित्र करावो। तो क्या भव्य एक दृश्य बनता है
1: जी, मयूर मरावे
0: मरुआ मरुआ,
1: हाँ,
0: और उस फूल लगा के उसे सजाया गया है। और ये जो तीज त्योहार अति बड़ो सब मन मोद बढ़ावो, ये तो इसीलिए होते हैं तीज त्योहार कि सब अपना मौज मस्ती करें। उमड़े श्याम सजल घन गर्जन गहरी सुनी सच पावो। उसका सच्चा आनंद जो है तभी होता है जबकि बादल भी उमड़ रहे हैं और बादल की ध्वनि और नगाड़े जो बजते हैं बादल के वो भी सुनाई दे। ये वृंदावन दास जी का लिखा हुआ पद है और ऐसे बहुत संत कवि रहे जिन्होंने कितना साहित्य लिखा है उनमें से ये।
1: तो अब देर न करियो
0: चला सकी।

0: kahit naas. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है जिसका उपयोग देश को वैश्विक स्तर पर सामग्री सृजन के केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सरेंडोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं।
1: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते।
0: नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा हुई। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की भी घोषणा की है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने कल इसकी मंजूरी दी। डॉक्टर सोमनाथन का कार्यकाल इस महीने की 30 तारीख को समाप्त हो रहा था। समिति ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल भी एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। विदेश

0: मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।
1: इंडिया इज प्राउड टू बी वन ऑफ अफ्रीका।
2: भारत अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश साझेदार होने पर गर्व महसूस करता है। पिछले साल हमारा द्विपक्षीय व्यापार 93 अरब अमरीकी डॉलर रहा। भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। ये निवेश दूर संचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे, कृषि और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद में की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का रहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। संसद में आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा निर्धारित है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। ये विनियोजन उस वर्ष सेवाओं के लिए निर्धारित से अधिक राशि के भुगतान के लिए किया जा रहा है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई थी जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉक्टर वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रुपये की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। राज्य में विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नेता देवेंद्र नाथ महतो के साथ 5 प्रदर्शनकारी शामिल हो गए हैं। इनमें 2 महिलाएं भी हैं। ब्लड शुगर और रक्तचाप कम हो जाने के कारण श्री महतो के स्वास्थ्य को लेकर चिंता पैदा हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल कहा है कि उनकी सरकार विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए संकल्पित है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर राजधानी रांची में 25 जुलाई से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारी विद्यार्थी 14वें झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटेजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत @2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। रेलवे ने आदर्श रियायत अकरार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। इस मंजूरी के साथ ही अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने की व्यवस्था बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत ऑपरेटरों को 20 वर्ष तक के लिए अनुमति दी जा सकेगी। मंत्रालय के अनुसार कंटेनरों की रेल ढुलाई से सड़क यातायात की भीड़ कम होगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में गंभीर सुरक्षा स्थिति के बावजूद हुर्मुज जलडमरू मध्य से होकर 60 व्यापारिक जहाज सुरक्षित निकाल आए हैं। संसद में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि खाड़ी क्षेत्र से 3,972 भारतीय नाविकों को स्वदेश भेजा गया है और 2400 घंटे काम कर रही आपदा प्रबंधन प्रणाली के पास हजारों फोन और ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ऊर्जा आपूर्ति के लिए यह दुनिया का एक प्रमुख जलमार्ग है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत

0: में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। विक्रम मिश्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या, विदेश मंत्री विजेता हेरात और विदेश सचिव अरुणी रणराजा से मुलाकात की। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसी सप्ताह ये समझौता हो सकता है। एक रिपोर्ट।
1: इस संभावित समझौते से होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाता है या नहीं। ईरान ने कहा कि वह होर्मुज जलडमरू मध्य पर एक हद तक नियंत्रण चाहता है और इस मार्ग से आवाजाही वैसी नहीं रहेगी जैसी युद्ध से पहले थी। ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य के उत्तरी हिस्से को जबकि ओमान दक्षिणी हिस्से को नियंत्रण करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ईरान युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण चाहता है। ईरान ने आगाह किया कि अमेरिका के किसी और हमले की स्थिति में वह खाड़ी देशों को निशाना बनाएगा। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: जापान के

0: मार्ग से आवाजाही वैसी नहीं रहेगी जैसी युद्ध से पहले थी। ईरान हॉर्मुज जलडमरु मध्य के उत्तरी हिस्से को जबकि ओमान दक्षिणी हिस्से को नियंत्रण करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ईरानी युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हॉर्मुज जलडमरु मध्य पर नियंत्रण चाहता है। ईरान ने आगाह किया कि अमेरिका के किसी और हमले की स्थिति में वह खाड़ी देशों को निशाना बनाएगा। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जापान के हिरोशिमा में आज परमाणु बम गिराए जाने की बरसी है। सन 1945 में हुई इस घटना में 140,000 लोग मारे गए थे। आज सुबह घटनास्थल पर पीस मेमोरियल पार्क में मौन रखा गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने परमाणु हथियारों को खत्म किए जाने की अपील की। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने SDRF, NDRF, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों को घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव अभियान सुनिश्चित करने को कहा है। उत्तराखंड आपदा विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया गया है।
2: उत्तराखंड के लिए अभी जो अलर्ट आया है वो देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के शेष जनपदों के लिए येलो अलर्ट है। तीन जनपद जहां पे ऑरेंज अलर्ट है वहां पर ज्यादा बरसात की संभावना है और बाकी जनपदों में नॉर्मल बरसात होगी। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं विभिन्न माध्यमों से और SMS के माध्यम से हम लोगों को अलर्ट करते हैं।
1: राज्य में मौसम के बारे में और जानकारी दे रही है हमारे संवाददाता।
3: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभावित आपदा की किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य की सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों और नदी नालों की निगरानी रखने पर भी जोर दिया है। उन्होंने आपातकालीन परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रखने और प्रत्येक घटने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में जनहानि को रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: मौसम विभाग ने आज झारखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार आज दोपहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्रहित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। खेलों में जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में उड़ीसा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कोयम्बटूर में आज सेमीफाइनल में उड़ीसा का मुकाबला पंजाब से जबकि झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: संसद में जारी गतिरोध समाप्त करने के प्रयास के तहत संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, संसद गतिरोध, राहुल गांधी से मिले रिजिजू, परिसीमन और FCRA पर राहत तलाशने की कोशिश। जकरबर्ग ने भारत से मांगी माफी, फेसबुक से PM मोदी की पोस्ट हटाने पर आखिर झुके मेटा प्रमुख, अमर उजाला सहित कई अखबारों की सुर्खी है। पत्र लिखता है, मेटा ने माना, खास तरह का कंटेंट बढ़ाने के लिए मिली थी मोटी रकम। दैनिक जागरण ने अपने आर्थिक पन्ने पर RBI गवर्नर के शब्द प्रकाशित किए हैं, लगातार चौथी बार रेपो रेट 5.25% पर स्थिर। गवर्नर ने कहा, पश्चिम एशिया में संघर्ष जारी रहा तो ईंधन और खाने पीने की चीजें हो सकती है महंगी। नीट होगी फुल प्रूफ, JEE तर्ज पर परीक्षा की तैयारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया हलफनामा। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर युवाओं के नशे में गिरफ्त होने का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, ताकि नशे की गिरफ्त में ना आए युवा। पत्र लिखता है, भारत में करीब 75% युवा 21 साल की उम्र तक किसी न किसी नशे का शिकार हो चुके हैं। परिवार और शिक्षक संजीदगी से संवाद करें तो उन्हें नशे से बचाया जा सकता है। ईरान और ओमान हॉर्मुज खोलने पर हुए सहमत, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, ईरान को हॉर्मुज पर मिल सकता है कंट्रोल। दैनिक भास्कर ने कोटा में नोनेरा एब्रा डैम के बंद होने

0: के बाद काली सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से चारों तरफ छाई हरियाली का चित्र प्रकाशित किया गया, जिसमें पानी के ठहराव से नदी किनारे बसी कराइयों और हरी भरी वादियों का सौंदर्य चरम पर है।
1: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: আকাশবাণী কৈলা শহর। এখন দিল্লি কেন্দ্রের হিন্দি এবং ইংরেজি সংবাদ এবং এরপরে মুম্বাই কেন্দ্রের বিবিধ ভারতীয় অনুষ্ঠান রিলে করে শোনানো হচ্ছে।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মাই ফরহত নাজ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कथा कहन की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। श्री मोदी ने कल नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सेनरुंडोस के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने श्री टेड के साथ भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा की। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की भी घोषणा की है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने कल इसकी मंजूरी दी। डॉक्टर सोमनाथन का कार्यकाल इस महीने की 30 तारीख को समाप्त हो रहा था। समिति ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल भी एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि एजेंसियां जांच कर रही हैं और दोषी जेल भेजे जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी विद्यार्थी 14वें झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों को घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव अभियान सुनिश्चित करने को कहा है। मौसम विभाग ने देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट और राज्य के बाकी हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण चमोली और बागेश्वर जिलों में आज कक्षा 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं को जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। श्री विक्रम मिश्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके, प्रधानमंत्री हरेनी अमरसूर्या, विदेश मंत्री विजय तहरात और विदेश सचिव अरुणी अरुणम राजा से मुलाकात की। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में गंभीर सुरक्षा स्थिति के बावजूद होर्मुज जल डमरू मध्य से होकर 60 व्यापारिक जहाज सुरक्षित निकल आए हैं। संसद में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि खाड़ी क्षेत्र से 3972 भारतीय नाविकों को स्वदेश भेजा गया है और 2400 घंटे काम कर रही आपदा प्रबंधन प्रणाली के पास हजारों फोन और ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। होर्मुज जल डमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ऊर्जा आपूर्ति के लिए यह दुनिया का एक प्रमुख जल मार्ग है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़े मुद्दों को लेकर निर्माण एजेंसी और इंजीनियरों तथा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रभावित सड़क खंडों को ठीक करने और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उपाय किए गए हैं। सड़क मार्ग के पूरी तरह ठीक होने तक टोल को स्थगित रखा गया है। इस एक्सप्रेसवे के 64 किलोमीटर सड़क खंड पर पिछले महीने की 26 तारीख को फिसलन महसूस की गई थी। सभी दोषियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है। सड़क का निर्माण करने वाली एजेंसी प्राधिकरण की भावी परियोजनाओं के लिए बोली नहीं लगा सकेगी। एजेंसी पर 2% का जुर्माना भी लगाया गया है। संसद में आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा भी बाकी है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर ओमान के

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की

शिल्पा राव और सचेत टंडन की आवाजों में अगला गीत। प्रिया सरैया ने इस गीत को लिखा है, धुन बनाई है सचिन जिगर ने। फिल्म का नाम है विक्की विद्या का वो वाला वीडियो।

आइए अब आपको सुनवाते हैं मैं प्रेम की दीवानी हूँ इस फिल्म का गीत। चित्रा और केके की आवाजें हैं। गीतकार हैं देव कोहली और संगीतकार अनुमति।

0: सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं। सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लूं।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
0: सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। शहीद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
3: एक और
2: आ गया।
4: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए
7: अगला गीत बेफिक्रे फिल्म से सुना रहे हैं आपको। अरिजीत सिंह की आवाज में जयदीप साहनी का लिखा गीत है, तर्ज बनाई है विशाल एंड शेखर ने।

कार्यक्रम चित्रलोक का आखिरी गीत दे दे प्यार दे इस फिल्म से अरमान मलिक की आवाज है। कुणाल वर्मा ने इस गीत को लिखा है, अमाल मलिक ने संगीत से सजाया है।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न करते हैं। आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ लेती हूँ विदा। मैं पूजा नरानिया, नमस्कार।

0: पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता, आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।
0: ऐसी अद्भुत यादें

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक ऐसे संगीतकार को जो अपने कॉलेज के जमाने में अच्छे क्रिकेटर रहे थे, लेकिन क्रिकेट के मैदान में जाने की बजाय वो आ गए फिल्मी दुनिया के मैदान में और बन गए संगीतकार और निर्देशक। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है जाने माने संगीतकार, निर्देशक और स्क्रीन प्ले राइटर विशाल भारद्वाज पर।

0: बच्चा है जी।
1: विशाल भारद्वाज का जन्म हुआ था बिजनौर उत्तर प्रदेश में। उनके पिता राम भारद्वाज एक जाने माने कवि और गीतकार थे। विशाल की शिक्षा दीक्षा हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई। अपनी जवानी के दिनों में विशाल भारद्वाज कुछ गुमनाम गजल गायकों के लिए हारमोनियम बजाया करते थे। दिल्ली के प्रगति मैदान में होने वाले बहुत सारे फूड फेस्टिवल्स में उन्होंने अपने प्रोग्राम किए। आगे चलकर आरवी पंडित से उनकी जान पहचान हुई और इस तरह से विशाल भारद्वाज एक म्यूजिक कंपनी में आ गए। एक दोस्त ने विशाल भारद्वाज का परिचय जाने माने गीतकार और निर्देशक गुलजार से करवाया।

सोच के बाद विशाल ने जंगल बुक, एलिस इन वंडरलैंड और गुच्छे जैसे कई सीरियल्स में गुलजार के लिखे गानों को स्वरबद्ध किया। जंगल बुक का टाइटल गीत तो आपको याद ही होगा, जंगल जंगल बात चली है पता चला है। ये गाना बड़ा ही लोकप्रिय हुआ था। इसके बाद जब गुलजार बना रहे थे फिल्म माचिस, तो बतौर संगीतकार उन्होंने विशाल भारद्वाज को साइन किया। फिल्म माचिस का संगीत एकदम अलग तरह का था, ये एक ताजगी भरा संगीत था। इस फिल्म के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए, जैसे ये गाना।

सभी गानों को सुनकर लगता नहीं है कि किसी नवोदित संगीतकार की रचनाएं हैं ये, और फिर गुलजार के गानों को स्वरबद्ध करना कोई आसान काम नहीं है। ये बात तो जाने माने संगीतकार राहुल देव बर्मन पहले ही कह चुके थे। जाहिर है कि विशाल भारद्वाज ने कई चुनौतियों के बीच काम करके अपने आप को साबित किया। विशाल भारद्वाज की दूसरी बड़ी फिल्म थी

सत्या के बाद विशाल भारद्वाज ने कमल हासन की फिल्म चाची 420 में भी संगीत दिया और कई अलग अलग फिल्में उनकी आईं। लेकिन जिस फिल्म का संगीत ज्यादा लोकप्रिय हुआ और सुना गया वो थी एक बार फिर गुलजार की फिल्म हू तू तू। इस फिल्म का छई चप छई गाना बड़ा लोकप्रिय हुआ था।

इसके बाद विशाल भारद्वाज ने सोचा कि वो संगीत की दुनिया से फिल्म निर्माण की दुनिया में आ जाएंगे और फिर उन्होंने साल 2002 में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था मकड़ी। शबाना आजमी के अभिनय वाली इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण और इसके अलावा संगीत, ये सारी जिम्मेदारियां खुद विशाल भारद्वाज ने संभाली थी। इसके बाद वो फिल्मी दुनिया में बाकायदा चले आए और उनकी निर्देशित पहली बड़ी फिल्म कहलाई मकबूल। मकबूल के बाद विशाल भारद्वाज ने एक और फिल्म का निर्माण किया। ये बच्चों की फिल्म थी और रस्किन बॉन्ड की कहानी पर आधारित थी। ये फिल्म थी द ब्लू अम्ब्रेला। इसके बाद विशाल भारद्वाज ने एक धमाकेदार फिल्म बनाई। ये फिल्म थी ओंकारा।

इस दौरान विशाल भारद्वाज का संगीत देने का काम लगातार जारी रहा और उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में आईं, जैसे लव के लिए कुछ भी करेगा।

विशाल भारद्वाज के बारे में आगे बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली में पढ़ाई के दिनों में विशाल भारद्वाज की मित्र बनी रेखा, जो अब उनकी पत्नी और फिल्मी दुनिया की एक जानी मानी गायिका हैं। रेखा भारद्वाज की आवाज में सुनिए ओमकारा फिल्म का।

विशाल भारद्वाज की फिल्में बड़ी अनूठी हुआ करती हैं। वो फिल्मी दुनिया के सामान्य चलन से अलग हटकर अपनी फिल्में पेश करते हैं। जैसे फिल्म कमीने एक अलग तरह की कहानी थी और इसका संगीत भी अपने आप में बिल्कुल अलग था।

आपको बताएं कि विशाल एक अच्छे गायक भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि विशाल कितनी बहुमुखी प्रतिभा है। एक तरफ संगीत देते हैं, दूसरी तरफ कथा पटकथा संवाद लिखते हैं, निर्माण निर्देशन भी करते हैं और गायक भी हैं। जी हाँ, फिल्म यू मी और हम का ये गाना सुनिए।

भारद्वाज ने तैयार किए थे। फिल्म हाले दिल का ये शीर्षक गीत सुनिए, कमाल का गाना है ये और विशाल भारद्वाज की प्रतिभा को अच्छी तरह से दर्शाता है।

अब विशाल भारद्वाज निर्माता भी बन चुके हैं और अपनी कंपनी के जरिए नई प्रतिभाओं को उतार रहे हैं। जैसे कि विशाल भारद्वाज ने बतौर प्रोड्यूसर अपनी फिल्म बनाई है इश्किया। फिल्म इश्किया के गाने भी गुलजार ने ही लिखे हैं और इनका संगीत खुद विशाल ने तैयार किया। जरा इब्ने बतूता सुनिए।

विशाल भारद्वाज अपने खास तरह के सिनेमा के लिए और अपने खास तरह के संगीत के लिए जाने जाते हैं। साल 2011 में वो लेकर आए फिल्म सात खून मां।

साल 2013 की शुरुआत विशाल भारद्वाज ने की अपनी एक दिलचस्प फिल्म के जरिए, जिसका नाम था मटरू की बिजली का मंटोला। इस फिल्म का ये दिलचस्प गाना सुनिए, विशाल भारद्वाज की जीवन संगिनी रेखा भारद्वाज ने।

0: विशाल भारद्वाज लेकर आए एक बड़ी ही चर्चित फिल्म जिसका नाम है एक थी डायन। विशाल भारद्वाज अपनी अलग तरह की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। आज उनकी गिनती हिंदी फिल्म उद्योग के संवेदनशील निर्देशकों में होती है। साल 2014 में विशाल भारद्वाज ने शेक्सपियर की कृति हैमलेट पर बनाई अपनी फिल्म हैदर 4 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते।
1: बिस्मिल बिस्मिल बुलबुल बिस्मिल

विशाल भारद्वाज की एक और फिल्म आई डेढ़ इश्किया, जो इश्किया का सीक्वल है। आपको बता दें कि इन दोनों ही फिल्मों के निर्देशक अभिषेक चौबे, निर्माता विशाल भारद्वाज, संगीत भी विशाल का ही।

विशाल भारद्वाज एक संगीतकार होने के साथ साथ एक निर्माता, निर्देशक और लेखक भी हैं। पिछले दिनों उन्होंने फिल्म तलवार का निर्माण भी किया और इसकी कहानी भी तैयार की। आपको बता दें, फिल्म तलवार का निर्देशन जाने माने शायर, निर्माता, निर्देशक और लेखक गुलजार की बेटी मेघना गुलजार ने किया था और फिल्म तलवार ने कई महत्वपूर्ण पुरस्कार हासिल किए थे। पिछले दिनों आई निशिकांत कामत की फिल्म दृश्यम में विशाल भारद्वाज ने संगीत दिया था। इसके अलावा फिल्म जुगनी में विशाल भारद्वाज ने ये गीत गाया था।

विशाल भारद्वाज बहुत ज्यादा फिल्मों में संगीत नहीं देते। आजकल वो उन फिल्मों का संगीत निर्देशन कर रहे हैं जिन्हें या तो उन्होंने प्रोड्यूस किया है या फिर उनका निर्देशन उन्होंने किया है। लेकिन पिछले दिनों एक फिल्म में उन्होंने कुछ गाने बनाए। ये फिल्म थी मदारी। विशाल भारद्वाज प्रोडक्शंस की एक महत्वपूर्ण फिल्म पिछले दिनों आई और वो फिल्म थी रंगून।

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता, निर्देशक, लेखक और संगीतकार विशाल भारद्वाज पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं लेखक निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत।
1: आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ आलोक शर्मा मौजूद हैं। आलोक, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद यूनुस भाई, यहाँ आना अपने आप में एक सम्मान की बात है। विविध भारती में, जिसको हम बचपन से सुनते आए हैं, और बहुत कम लोगों को पता है कि मैंने विविध भारती में बतौर आपातकालीन उद्घोषक तीन रातें असल में। उन दिनों जब हम लोग वाणी कोर्स किया करते थे, तो शुरुआत में जो आपातकालीन उद्घोषक होते थे उनको रात की ड्यूटी मिलती थी।
1: बिल्कुल।
2: तो तीन रातें मैंने
1: ओवरनाइट ट्रांसमिशन
2: बिताई हैं।
1: सही है। लेकिन चूंकि बचपन को याद किया, तो बचपन जो है आलोक आपका, वो कॉमिक से जुड़ा हुआ है, ये चस्का कहां से लगा था?
2: बचपन बड़ा मजेदार है। मेरा बचपन असल में कॉमिक्स और रेडियो दोनों से जुड़ा हुआ था।
1: बिल्कुल।
2: तो क्योंकि हम एक संयुक्त परिवार में रहते थे, और मेरी जो माता जी हैं उनको रसोई संभालनी पड़ती थी, दुनिया भर के मेहमान होते थे घर में, तो सबको संभालना पड़ता था। और मेरे ख्याल से मैं शायद 5 या 6 महीने का रहा हूँगा, तो एक छोटा रेडियो था, वो मेरे बगल में वो चला दिया करती थी, और मैं वो रेडियो सुन के मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे आसपास है। तो मेरे ख्याल से रेडियो मेरे जीवन में पहले आया, फिर कॉमिक्स आई मेरे जीवन में। कॉमिक्स इस वजह से आई कि माता जी को कॉमिक्स भी बहुत पसंद थी।
1: अच्छा।
2: हाँ, वो इंद्रजाल कॉमिक्स बहुत पढ़ा करती थी, फैंटम की बहुत बड़ी फैन थी, तो उनको फैंटम पसंद था, उनके पास अपना कलेक्शन था, तो ये कलेक्शन के साथ ही मैं बड़ा हुआ। और इसके साथ घर में ननिहाल में बहुत कॉमिक्स थी, तो जब भी हम ननिहाल जाते थे, मैं जो भी 2-3 साल का रहा हूँगा, तो कॉमिक्स के जो किरदार थे वो मुझे तब से पता थे। चाचा चौधरी, बिल्लू पिंकी, फैंटम जिसको वेताल बोलते थे उस समय में,
1: बिल्कुल,
2: मैंड्रेक, फ्लैश गॉर्डन, बहादुर, तो इन सबके साथ मैं बड़ा हुआ एक तरीके से कह सकते हैं हम।
1: बिल्कुल। ये वो दौर था जब कॉमिक्स किराए पर भी मिल जाती थी और दोस्तों से अदला बदली करके पढ़ी जा सकती थी।
2: वो दौर मेरे जीवन में थोड़ा बाद में आया, क्योंकि मेरे ननिहाल में इतनी किताबें थी कि मुझे किराए पे
1: बाहर से लेने
2: जाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उस समय में बाल पत्रिकाएं भी बहुत होती थी, पराग, नंदन, चंदा मामा, गुड़िया,
1: बाल भारती,
2: राजा भैया, कई किताबें,
1: ढेर,
2: और पराग तो मैं अभी भी कहता हूं कि पराग का बंद होना मेरे ख्याल से हमारी जो पीढ़ी के साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ है। पराग, धर्मयुग, जो वो सारी किताबें आ रही थी, तो ये सारी किताबें जो साप्ताहिक थी वो हफ्ते के हफ्ते ननिहाल आती थी। इंद्रजाल कॉमिक्स मेरे ख्याल से पाक्षिक, और पाक्षिक के बाद साप्ताहिक हो गई थी, मासिक किताबें आ रही थी, तो किताबों का एक पूरा पुलंदा था वहां पे, जब भी जाओ तो सब मिल जाता था। और मेरे नाना जी डॉक्टर थे, मगर वहां एक आजादी थी उस घर में, तो ऐसा नहीं कि फिल्मी पत्रिकाओं को नीची निगाह से देखा जाए, तो वहां मायापुरी भी थी, वहां माधुरी भी थी, वहां फिल्म फेयर भी थी, हर तरह की किताबें थी, और उन किताबों के बीच मेरा बचपन गुजरा। तो जो मुझे पसंद आती थी मैं

0: वहाँ से उठा के ले आता था मेरे पास, और मैंने पढ़ना सीखना और कॉमिक्स पढ़ना सीखना दोनों मेरा एक साथ हो रहा था, तो शिक्षा और कॉमिक्स दोनों साथ में चल रही थी।
1: बिल्कुल, तो ये जो कॉमिक्स का चस्का है, इसका सबसे मजेदार बात यह है कि घर पर कोई विरोध नहीं था।
0: पूरा ये नहीं कहूंगा कि पूरा विरोध नहीं था क्योंकि थोड़ा होता है ना कि आप जुनूनी पाठक बन जाते हैं एक टाइम, फिर आप खाना पीना छोड़ के पढ़ने लगते हैं, सुध छोड़ के पढ़ने लगते हैं,
1: कोर्स की किताब के अंदर,
0: कोर्स की किताब के अंदर कॉमिक्स रख के पढ़ने लगते हैं। तो ये तो हुआ, और ये इस हद तक चला गया वो जुनून के फिर तो घर पे थोड़ा विरोध होना स्वाभाविक था, क्योंकि फिर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं लग गए हैं। तो ये एक मैं कहूंगा कि बाकी दुनिया में अगर ये 100% हो रहा था तो मेरे साथ 30% हो रहा था, मगर हो रहा था
1: जरूरी,
0: हाँ जरूरी तौर पे हो रहा था कि और कुछ कर ही नहीं रहा है, सिर्फ कॉमिक्स पढ़ रहा है पूरे समय। तो ये हुआ, मगर बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत ज्यादा विरोध नहीं था।
1: क्या जी को थोड़ा बहुत था। बच्चे जो कुछ पढ़ रहे थे आप उससे कुछ अलग पढ़ रहे थे या आप भी सेम चीजें पढ़ रहे थे?
0: नहीं, मैं मेरे ख्याल से उनसे काफी अलग चीजें पढ़ रहा था, क्योंकि जो मेरी पीढ़ी के पाठक हैं वो आमतौर पर मनोज कॉमिक्स, राज कॉमिक्स, डायमंड कॉमिक्स वाले पाठक रहे हैं। मैं क्योंकि वो चीजें भी पढ़ रहा था जो मेरे मामा या मौसियां पढ़ रहे थे, मेरे से एक पीढ़ी ऊपर, तो उसमें इंद्रजाल कॉमिक्स भी थी,
1: बिल्कुल
0: उसमें इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया थी, धर्मयुग में बच्चों का कोना था, कार्टून कोना डब्बू जी था, जो मेरी जनरेशन के, मेरी पीढ़ी के लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पता था उसके बारे में, लेकिन मैं वो पढ़ रहा था। इसके अलावा भी क्योंकि मैं भिलाई में पला बढ़ा, औद्योगिक नगर है छत्तीसगढ़ का, पहले वो मध्य प्रदेश था, तो भिलाई में इंडो रशिया कोलैबोरेशन में ये स्टील प्लांट बना था, तो रूस और भारत के लोग वहां रहते थे शहर में,
1: बिल्कुल,
0: तो हमें बहुत सारी इंटरनेशनल कॉमिक्स भी मिल जाती थी, तो मार्वल, डीसी, एस्ट्रिक्स, ओबेलिक्स, टिनटिन, ये भी उपलब्ध थी हमें पढ़ने के लिए। बहुत लोग नहीं पढ़ते थे लेकिन मुझे इनका भी चस्का उसी समय से लग गया था।
1: बल्कि रशियन किताबें भी जो लोग कथाएं में हिंदी अनुवाद आया करते थे वो भी मौजूद रहे होंगे।
0: हाँ, यूक्रेनी लोक कथाएं,
1: बिल्कुल
0: रूसी लोक कथाएं, गोरकी की कहानियां,
1: बल्कि मुल्ला नसरुद्दीन, मुल्ला नसरुद्दीन,
0: हाँ मुल्ला नसरुद्दीन था एक बहुत अच्छा,
1: राधुका प्रकाशन,
0: हाँ राधुका प्रकाशन, और उसमें कैरेक्टर होता था नाजानू, हाँ नाजानू की कहानियां, और एक मैगजीन आती थी मीशा, तो मीशा में एक कैरेक्टर होता था, उसका नाम मेरे दिमाग से उतर गया, वो दलिया खाता था और उसको ताकत आ जाती थी तो ऑलमोस्ट पोपाई पोपाई के जैसा था, मगर काफी मजेदार कैरेक्टर्स थे ये, तो इनकी भी उपलब्धता थी और उस समय तो मेरे ख्याल से पूरे भारत में थी।
1: क्या बात
0: तो
1: है?
0: मतलब मीशा तो मेरे ख्याल से सबने पढ़ी है, मेरे
1: सबने पढ़ी, बिल्कुल। तो इस दौर को याद करते हुए एक गाना सुनते हैं फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे।
0: जी बिल्कुल।
1: तो कौन सा गाना होना चाहिए?
0: बचपन के दिन भी क्या दिन थे।
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: पचपन के दिनों की सैर कर रहे हैं और इतनी तरह की कॉमिक्स की हम बात करें, जब ये कॉमिक्स आप पढ़ते थे आलोक, तो कल्पनाओं की वो कौन सी दुनिया थी जिनमें आप सैर करते थे और क्या अपने लिए कुछ सोचते थे इन कॉमिक्स से जुड़ा हुआ?
1: तो इसकी एक बड़ी मजेदार कहानी है। हमारे घर में टीवी नहीं था। हमारे घर में पहला टीवी जब आया तो मैं 26 साल का था।
0: मतलब बहुत ही लेट आया।
1: तो ऐसा नहीं है कि टीवी पता नहीं था, टीवी पड़ोस में था, हम देख लेते थे वहां जाके। तो मेरे ख्याल से 1985 का साल था, टीवी पे संडे की फिल्म आ रही थी, कब क्यों और कहां। उसमें प्राण साहब का एक खतरनाक रोल था जिसमें वो मुर्दे का रोल करते हैं, उनकी आंखें बल्ज होके बाहर निकली। तो वो देख के मैं बहुत बुरी तरह से डर गया।
0: अरे
1: हाँ, उसके बाद प्राण नाम से मुझे दहशत हो गई।
0: लेकिन ये प्राण नाम दो जगह चलता था।
1: हाँ, ये मैं वहीं आ रहा हूं। तो मेरे पिताजी को ये लगा कि अगर मुझे मेरे मन से प्राण नाम की दहशत हटानी है तो उनको ये बताना पड़ेगा कि जो चाचा चौधरी है, मेरा सबसे प्रिय किरदार, उसके सर्जक भी प्राण है, उनका नाम भी प्राण है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो PRA-01 लिखा होता है कॉमिक्स के ऊपर में, वो प्राण है।
0: हाँ।
1: और जो चाचा चौधरी बनाते हैं उनका नाम भी प्राण है। मैं 4 या 5 साल का रहूंगा उस समय, तो मेरे दिमाग में ऐसा एक खांचा बन गया कि वो जो प्राण है फिल्मों में वही चाचा चौधरी भी बनाते हैं। बहुत लंबे समय तक, करीब 1-1.5 साल तक। और बाद में वो फोटो भी, जो प्राण की फोटो आती थी कॉमिक्स के पीछे, प्राण का जन्म कसूर ब्रैकेट में अब पाकिस्तान
0: हाँ,
1: में हुआ था। तो वो जो पूरा, तो मैं उस तरह से कॉमिक्स पढ़ता था, मैं वहां से पढ़ता था, प्रकाशक मुद्रक तक पढ़ता था मैं कॉमिक्स।
0: बिल्कुल।
1: तो वो उनका जो एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आता था 85 के आसपास, वो थोड़ा सा प्राण, जो अभिनेता प्राण है, उनके जैसा ही दिखता था वो।
0: नहीं,
1: मुझे ऐसा लगता था।
0: ये तो जैसा आप देख रहे हो वैसा,
1: हाँ, जैसा वो, हाँ, जैसी जिसकी नजर।
0: हाँ।
1: तो मुझे ऐसा लगता था कि ये वही है। दूसरी चीज, मेरे पिताजी ने मेरे जन्म के पहले कार्टूनिंग के कोर्सेज किए थे, वो कार्टून बनाते थे।
0: ओके।
1: हाँ, पारिवारिक व्यापार के क्षेत्र में वो आ गए थे, लेकिन उनका दिल जो था वो कार्टूनिंग में था। तो मुझे ये जरूर पता था कि ये कार्टून्स हैं और इनको कोई बनाता है। और ये जो प्राण वाली कहानी हुई, उसके बाद एक आदत बैठ गई कि अगर मैं कोई कॉमिक्स पढ़ रहा हूं तो मैं जानना चाहता था इसको लिखा किसने है, इसको बनाया किसने है। कल्पना की उड़ान जरूर थी, लेकिन मुझे ये भी पता था कि इन्हें कोई बनाते हैं, लोग बनाते हैं।
0: तो उस दौर ये कौन कौन से नामों से आप परिचित हुए?
1: अब बहुत सारे असल में। तो जैसे मुझे 5-6 साल की उम्र से पता था कि ली फॉक फैंटम लिखते हैं और साइबरी उसको ड्रॉ करते हैं, हालांकि उनसे पहले विल्सन मैकॉय और बहुत सारे लोग थे।
0: पहले ही बॉक्स में नाम आता था।
1: हाँ, पहले बॉक्स में नाम आता था ली फॉक साइबरी करके, फॉक एंड बेरी लिखा होता था। तो मुझे पता था ये फैंटम भी लिखते हैं, ये मैंड्रेक भी लिखते हैं। फ्लैश गॉर्डन जो है वो एलेक्स रेमंड बनाते हैं। रिप कर्बी बहुत सारा एलेक्स रेमंड बनाते हैं। बहादुर जो है वो आबिद सुरती लिखते हैं, गोविंद ब्राह्मणिया ड्रॉ करते हैं। ये उस 5-6 साल की उम्र में मैंने ये नाम रख लिए थे, क्योंकि मेरे लिए ये भी जरूरी था, चाहे जितनी भी किताबें उस समय आ रही हों, एक सीमा रहती थी इन किताबों की ना, आपको 3 मिलेगी 4 मिलेगी 5 मिलेगी, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से वो लोग हैं जिनका काम आपको बहुत पसंद है। तो बजाय एक किरदार को फॉलो करने के, आप उनके क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं कि उनके जो सर्जक हैं, कि अगर मुझे आबिद सुरती का काम पसंद है तो मैं आबिद सुरती का और काम ढूंढूंगा, अगर मुझे प्राण का काम पसंद है तो फिर शायद मैं चाचा चौधरी बिल्लू पिंग की खत्म करने के बाद जाब और दाबू भी पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि पर्टिकुलर एक क्वालिटी आ रही है उनके काम की। तो ये उस समय की ट्रेनिंग है मेरे ख्याल से, जो अभी तक है। मैं अभी भी कोई कैरेक्टर को फॉलो नहीं करता, मैं जनरली क्रिएटर फॉलो करता हूं।
0: बहुत बढ़िया बात है। तो कॉमिक्स की ये दुनिया आपको क्या करियर की किसी दुनिया की तरफ ले जा रही थी, या तब कुछ और सोच रखा था जब मम्मी पापा पूछते थे कि बड़े होके क्या बनना है?
1: नहीं, अच्छी चीज ये थी कि हमसे कभी पूछा ही नहीं गया बड़े होके क्या बनना है, तो वो प्रेशर था नहीं सर पे। दूसरी चीज ये थी कि मैं कार्टून्स बनाने लग गया था बहुत बहुत यंग एज में, 4-5 साल का रहूंगा, तो मैंने जैसे सारे बच्चे करते हैं, तो ऐसा कुछ बहुत महान ड्राइंग्स नहीं कर रहा था मैं, लेकिन मुझे शेहाब की ड्राइंग्स बहुत पसंद आती थी। शेहाब साहब छोटू लंबू किया करते थे, और मुझे लगता है कि वो अपने समय की नहीं, अभी के भी सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में एक हैं। तो शेहाब

0: साहब की जो कला थी वो मुझे बहुत पसंद थी, उनको मैं काफी कॉपी करता था। कार्टूनिस्ट प्राण को कॉपी करना बहुत मुश्किल था क्योंकि बहुत कम लाइंस में वो बहुत सारी चीजें निकाल लेते थे। तो मुझे ये था कि मैं कार्टून्स बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये प्रोफेशन बनेगा नहीं बनेगा उसकी कोई क्लैरिटी ऐसी थी नहीं मेरे मन में। कार्टून मैं स्वांता सुखाए अपने लिए बना रहा था। एक और चीज ये थी कि पिताजी का काम ऐसा था कि हमारे ट्रांसफर्स होते थे बहुत, एक शहर से दूसरे शहर, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता था कि हर बार नई स्कूल होगी, नई क्लासेस होंगी, नए सहपाठी होंगे, अब फिर से नए दोस्त बनाने हैं, फिर से नए दोस्त बनाने हैं, हर दो तीन साल में स्कूल बदल रहा है, फिर से नए दोस्त बनाने हैं। तो अपने आप में वो काफी प्रेशर वाला काम होता है उस उम्र में। और उस उम्र में अगर मैं अब वापस पलट के देखता हूं तो ये जो कॉमिक्स के किरदार थे ये मेरे परमानेंट दोस्त थे, ये शहर दर शहर मेरे साथ चलते आ रहे थे। तो इनके साथ मेरा जो जुड़ाव था वो किसी असल दोस्त से ज्यादा हो चुका था जब तक मैं अपने टीनेज में या किशोर वय जिसको बोलते हैं वहां पहुंचा। तो ये एक चीज थी जिससे मेरा जो अटैचमेंट बोलते हैं वो कॉमिक से बढ़ा दिया। मेरे ख्याल से 10 या 11 साल का रहूंगा तब मुझे लगा कि मैं कार्टून्स बना सकता हूं और मैं ये भेज सकता हूं छपने के लिए। अच्छा। वो कॉन्फिडेंस रैंडमली आ गया था और घर में प्रेशर था पढ़ाई को लेकर और बाकी चीजों को लेकर भी, लेकिन ये मनाही नहीं थी कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो बस उसका फायदा मिला, मैंने कार्टून्स बना के भेजना शुरू किया, संपादक के खेत सहित सारे कार्टून्स वापस आने शुरू हुए।
1: लिफाफा
0: भेजता था, वो तो भेजना पड़ता था, जवाबी लिफाफा टिकट लगा हुआ, वो तो नियम ही था
1: जी।
0: तो शुरू में कार्टून्स नहीं बनाए थे, शुरू में मैंने सोचा कि मैं बहुत आलेख वगैरह लिखूंगा, मतलब वो उस उम्र में ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज्ञान है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ, तो
1: कुछ
0: भी कर सकते हैं और वो रहना चाहिए, मुझे लगता है वो बाल सुलभ कॉन्फिडेंस सब में पूरी उम्र रहना चाहिए, ताउम्र रहना चाहिए। तो मुझे अभी भी याद है पहला जो मैंने लेख लिखा था वो था डोडो पर, और वो मैंने भेजा था सुमन सौरभ में। अच्छा। और सुमन सौरभ से वो रिजेक्ट होके आ गया था, लेकिन मुझे उसमें कोई ऐसे संकोच शर्म नहीं आई थी। मैंने ठीक है दूसरा लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे, चौथा लिखेंगे, क्योंकि खोने के लिए कुछ है ही नहीं आपके पास, तो आप लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं। फिर मुझे लगा कि शायद मैं ड्रॉइंग्स बेहतर करता हूं लिखने से। तो हमारे शहर में एक कार्टून मैगजीन निकला करती थी, अभी भी निकलती है, 30 साल से निकल रही है वो मैगजीन, कार्टून वॉच नाम है उसका। तो कार्टून वॉच मेरे हाथ लगी किसी के दोस्त के घर पे और मैंने उसमें कार्टून्स देखे, तो वही मैं कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अलग तरीके का था, तो वो देख के लगा ये अगर ये छप रहे हैं तो मैं तो छप ही जाऊंगा। हाँ, और वो जो संपादक थे त्रिम्बक शर्मा, उनको मैं त्रिम्बक भैया बोलता हूँ। तो त्रिम्बक भैया असल में सबको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ना निहायत ही घटिया कार्टून हो तो छोड़ देंगे, नहीं तो छप जाते थे कार्टून। तो मुझे लगा ये तो मैं कर सकता हूँ, एंड बनाया मैंने कार्टून, 2-3 बनाए और दोनों तीनों छप गए पहली बार में। मतलब कार्टूनिंग में मेरा रिजेक्शन नहीं हुआ, कार्टूनिंग में मुझे लगा कि यहाँ तो
1: झंडे
0: गड़ गए। पहले दिन पहले ही कार्टून गए और 15 दिन में छप के आ गए, किताब आ गई घर पे। उस किताब को लेके मैं घूमता रहा कई महीनों तक, लेकिन हर महीने उसके बाद मैं नियम से कार्टून बनाता रहा। तो इस तरीके से कार्टूनिंग के करियर की शुरुआत हुई मेरी जब मैं शायद 13 या 14 साल का था।
1: और वो भी भिलाई में।
0: भिलाई में तो उसके थोड़े से पैसे मिलते थे, 100 रुपए, चाहे जितने भी कार्टून। तो ऐसा नहीं था कि पर कार्टून मिलेगा क्योंकि मैगजीन भी छोटी थी, तो 100 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। 100 रुपए में आप क्या कुछ नहीं कर सकते थे।
1: यस।
0: हाँ, तो और कॉमिक्स तो खरीद ही सकते थे। अब मतलब कॉमिक्स के लिए घर में बोलना या यहाँ वहां भागना नहीं करना पड़ता था। मुझे याद है 56 रुपए का सेट आता था।
1: हाँ,
0: दो सेट में
1: और वो बड़ा महंगा लगता था।
0: 56 रुपए बहुत महंगा था, लेकिन मुझे 100 रुपए मिल रहा था महीने, तो मैं 2 सेट खरीद सकता था मैं। तो इस तरीके से मेरी पहली लाइब्रेरी की शुरुआत हुई कॉमिक्स की।
1: क्या बात है, लाइब्रेरी एज इन दूसरों को किराए से देने लगे।
0: मैं हमेशा, मेरा कभी ये विचार था ही नहीं कि मैं किराए पे कॉमिक्स पढ़ूंगा। मुझे मेरी कॉमिक्स मेरे पास चाहिए थी।
1: अच्छा।
0: तो इसलिए मैं मतलब एक समय था 2-3 साल जब किराए से पढ़ी किताबें, मगर मुझे लगता था इतनी बड़ी लाइब्रेरी तो मेरी होनी चाहिए।
1: अपनी बड़ी
0: हाँ, एक दशमेश लाइब्रेरी करके हमारे शहर में लाइब्रेरी हुआ करती थी भिलाई में, गोल मार्केट में, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। और मेरा लाइफ का, मेरे मतलब जीवन का एक ही लक्ष्य था कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी तो चाहिए, इससे छोड़ी नहीं चलेगी। तो फिर मैंने मतलब दशमेश तो बंद हो गई और हमने अपनी लाइब्रेरी शुरू की और बहुत अच्छी तरह से रन की। मतलब वो हमारे छत्तीसगढ़ में उसको बोलते हैं अंचल, हमारे अंचल की सबसे बड़ी

0: लाइब्रेरियों में से एक थी जो हम लोग रन कर रहे थे।
1: कितने साल चलाई?
0: वो हमने चलाई करीब 4 साल।
1: अच्छा, और किताबें सब वापस आई सही सलामत?
0: हाँ, मतलब देखिए जब ये व्यवसाय बन जाता है ना तो थोड़ा नफा नुकसान तो होता है। तो नफा नुकसान होता था, लोग चुरा के ले जाते थे, फिर हमको ढूंढने जाते थे उनके मोहल्ले में, तो वो एक अपने आप में एक
1: अलग कहानी,
0: अलग कहानियां हैं। वो एक अलग, मेरे ख्याल से वो हमारा मालगुड़ी डेज है।
1: बहुत सही बात है, बहुत मजेदार बात। लेकिन क्या कार्टूनिंग की कोई बाकायदा ट्रेनिंग लेने की जरूरत महसूस हुई या ऐसा कोई मौका आया?
0: अब लगता है कि ले लेनी चाहिए थी। लेकिन तब कॉन्फिडेंस उस जगह पे था कि कुछ भी रिजेक्ट नहीं हो रहा था, जो बना रहे हैं सब छप रहा है। और फिर उन मैगजीन्स में भी छपने लगा जो मैगजीन्स में पढ़ रहा था, तो मेरा काम चंपक में आने लग गया, बाल भारती में आने लग गया, बालहंस में आने लग गया। उस समय की करीब करीब हर मैगजीन में काम आने लग गया था और पैसे भी मिलते थे उसके।
1: हाँ,
0: तो मजे की बात ये थी कि पैसे भी आ रहे हैं और वो ठीक ठाक पैसे थे। मतलब उस समय में एक 15-16 साल का लड़का अगर 500 रुपए भी महीने के बना ले रहा है,
1: बहुत ज्यादा रकम,
0: बहुत बड़ी रकम हो जाती है वो। तो वो पैसे भी आ रहे हैं, आपकी एक लाइब्रेरी भी चल रही ठीक ठाक, और आप कार्टून्स भी बना रहे हैं, तो फिर पढ़ाई कौन करेगा?
1: अच्छा,
0: फिर मैं 9वीं में फेल हो गया।
1: अरे बाप रे बाप, मतलब ये तो बम गिर गया,
0: तबाह हो गया मैं।
1: अच्छा,
0: तो 9वीं में मैं फेल हो गया, मुझे समझ नहीं
1: आगे की कहानी सुनिए। आप ब्रेक लगाते हैं, एक गाना सुनते हैं, कहां तक ये मन को अंधेरे चलेंगे।
0: चलिए कहां

0: रखता है
1: कि फेल हो जाऊंगा,
0: फेल हो जाऊंगा,
1: मतलब पढ़े नहीं थे कुछ। नहीं मुझे समझ में नहीं आया पूरा नवी कैसे गया, मुझे नहीं पता है।
2: वैसे नवी होता भी फिसलदार मैदानी है,
1: नवी को थोड़ा सा टफ बनाया जाता है ताकि बच्चा दसवीं में अच्छे स्कोर करे और स्कूल का एक स्कोर बना रहे, तो उसको स्कूल का स्कोर बनाने के लिए मुझे लगता है नवी को टफ बना दिया।
2: नहीं और ये समझाना कि भाई मिडिल स्कूल पीछे छूट गया,
1: छूट गया,
2: होश में आ जाओ।
1: नहीं वो तो आप हाफ पेंट से फुल पेंट पे आ जाते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा था कि मिडिल स्कूल तक हाफ पेंट था फिर फुल पेंट आया, तो फुल पेंट आई मतलब आप जिम्मेदार हो जाओ। मैं नहीं हो पाया मेरे ख्याल से। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत थी ना, मतलब आप एक तरफ लाइब्रेरी भी चल रही है, आप कार्टून्स भी बना रहे हो, स्कूल में टीचर्स भी आपको एक अलग निगाह से देखते हैं कि इसके तो कार्टून्स छप रहे हैं, तब तक मेरे लेख वगैरह भी छपने लग गए थे। तो मतलब क्लास नाइन्थ का एक लड़का है जिसका हर महीने
2: कहीं ना कहीं ना कहीं
1: वो छप रहा है, तो वो अपने आप में एक अंदर से तो अपने आप में एक रॉकस्टार वाली फीलिंग रहती है कि हम ही हमें।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: भले बाकी सारी चीजों में आप शून्य हो लेकिन एक वो जगह है जहां आमतौर पर कोई पहुंचता नहीं है, वहां जाके आपने अपना आसन जमा रखा है। तो डांट पड़ती थी स्कूल में कि ये सब करते रहोगे, तुम्हारे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, ये है वो है। मुझे लगा था निकल जाएगा, नहीं निकला। अब नहीं निकला तो क्या कर सकते हैं। लेकिन मजेदार बात मैं बताऊंगा आपको कि जो नवीं में मैं फेल हुआ उस दिन तो मौत थी मेरी। मतलब लाइफ का, जीवन का सबसे बड़ा फेलियर है वो, क्योंकि आपके सारे दोस्त आपसे एक साल आगे चले गए, अब आपके साथ बच्चे पढ़ेंगे। उस समय में तो ये लगता है एक साल छोटा तो बच्चा ही है, अभी तो पांच साल छोटे भी बराबर के लगते हैं। लेकिन वो था मोहल्ले वालों को आप क्या जवाब देंगे, सबको पता है आप नाइन्थ में थे, पूरे मोहल्ले को अगर पता चला कि आप दसवीं नहीं गए, आप वापस नाइन्थ रिपीट कर रहे हो, तो क्या होगा। एक तरीके से सामूहिक बहिष्कार हो जाता है जो बच्चा फेल होता है उसका, उसमें बच्चे की गलती है नहीं है।
2: हमारे यहाँ वो तो सोचा ही नहीं जाता। हाँ, वो जो एक्सेप्टेंस वाली बात है
1: ना, तो स्टिग्मा आ जाता है वो।
2: हाँ,
1: तो स्टिग्मा तो आ गया था और आप अपनी नजरों में तो गिर ही चुके हो।
2: हाँ,
1: तो एक आप अपनी नजरों में गिरे हो, एक आप अपने पेरेंट्स की नजर में गिरे हो, फिर छोटे भाई बहन है उनकी नजरों में भी गिरे हो, क्योंकि अभी तक आप रोल मॉडल थे और आपने मतलब काफी कुछ अच्छा किया हुआ है, अभी तक आप उनकी नजर में भी गिर गए हैं। मोहल्ले वालों को किसको सच बताएं किसको ना बताएं पता तो सबको चलेगा, क्योंकि उसमें से कुछ बच्चे हमारे स्कूल में भी हैं। अब उनसे झूठ बोलेंगे आप या सच बोलेंगे, आप फेलियर को एक्सेप्ट कैसे करते हैं। फिर आपके जो दोस्त हैं वो एक क्लास आगे चले गए हैं, तो आप उनके साथ स्कूल भी नहीं जाते,
2: नजरें कैसे मिलाएंगे,
1: नजरें कैसे मिलाएंगे।
2: हाँ।
1: उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि एक फेल होने वाले बच्चे के साथ उनके बच्चे खेलें।
2: हाँ।
1: तो ये जो पूरा एक हमारे समाज ने इस पूरी चीज को जैसा स्टिग्मा बना दिया है, उससे मैं गुजरा पूरे एक साल।
2: पूरे एक साल,
1: देखिए बाकी लोग तो बढ़ जाते हैं लेकिन आप वो अपने अंदर लेके चल रहे होते हैं।
2: बिल्कुल,
1: वो फेलियर को, और वो फेलियर ताजा
2: ही। घर वालों का एटीट्यूड क्या था?
1: कुछ खास ऐसा, मतलब पिताजी ने बोला कि अब चलो मेरे साथ काम भी करना पड़ेगा शुरू तुमको, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई में तो लग नहीं रहा कि तुम्हारा कुछ होने वाला है। तो मैंने उनके साथ काम करना भी शुरू किया।
2: क्या काम था वो?
1: मेरे फादर चॉकलेट्स वगैरह ये करते थे, होलसेल में चॉकलेट्स किराने दुकान वालों को सप्लाई करते थे। तो फिर उन्होंने पूरा भिलाई शहर का जो सप्लाई है मुझे दे दिया। भिलाई शहर मतलब ऐसा बहुत शहर नहीं, कुछ 25-30 दुकानें जो हम रेगुलरली जहां सामान सप्लाई किया करते थे, तो वो मुझे दे दिया उन्होंने कि ये तुम करोगे अब। तो मैंने वो शुरू किया। लाइब्रेरी फिर भी चल रही थी, कार्टून फिर भी बन रहे थे।
2: अच्छा। हाँ, ये सब चल रहा था।
1: और ये सब चल रहा था, उसके साथ में मैंने फादर को हेल्प करना भी शुरू किया। वो भी मेरे ख्याल से मेरे 48 साल के तो हो गए थे तब तक मेरे फादर। तो वो शुरू किया मैंने, मुझे ये लगा कि मुझे ये भी समझ में आया कि बिजनेस कैसे होता है। मैं आमतौर पर लोगों से बात करने में कतराता था, तो मेरी जो शर्म थी जो मोहल्ले में और लोगों के बीच थी वो खत्म होने लगी, वो झिझक हटने लगी मेरी। मुझे पता नहीं अगर इसको हम स्ट्रीट स्मार्ट बोल सकते हैं या नहीं, मगर थोड़ा सा एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस बूस्ट आया है मेरे अंदर उससे। बहुत बाद में, करीब मेरे ख्याल से उसके 30 साल बाद, मैंने एक शो लिखा और उस शो को लिखते समय मैंने जो लीड कैरेक्टर है उसका शो का, उसको क्लास नाइन्थ में फेल करवाया। इसलिए नहीं कि ये रेवेंज था, इसलिए कि मुझे बहुत मन था कि मैं दुनिया को बताऊं कि
2: फेलियर
1: बच्चा फेल होता है
2: उस बच्चे तो वो के ऊपर
1: अपने, अपने आप में वो एक मौत से गुजर रहा होता है।
2: Correct.
1: उसके ऊपर नई चीजें मत ला दो, क्योंकि वो खुद अपनी नजरों में गिरा हुआ है। तो उसकी जितनी हेल्प कर सको कर दो, हेल्प नहीं कर सकते तो नया गड्ढा मत खोदो उसके। तो ये बहुत जरूरी है लोगों के लिए।
2: कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

0: में लिखा था ये आपने?
1: ये एक शो था Z5 पे जिसका नाम है फायरफ्लाइज पार्थ और जुगनू। तो हम लोग बात कर रहे थे, शुरू से डिस्कशन ये था कि ये क्लास में टॉपर नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग टॉपर्स की कहानियां बहुत देखते हैं, हम उसकी कहानी नहीं देखते जो पीछे छूट जाता है। तो हमेशा से वो आइडिया था कि इसकी कहानी वो होगी कि ये पीछे छूट जाए। तो फिर मैंने अपने अनुभवों में वापस जाके उसको कुरेदा और मैंने कहा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि नाइन्थ में फेल हो गया है। तो सबसे पहले तो हमको जाके नया एजुकेशन सिस्टम चेक करना पड़ा कि नाइन्थ में फेल होते हैं नहीं होते हैं। फिर पता चला कि होते हैं। हाँ, जहां वो कहानी बेस्ड है वहां तो होते हैं। तो फिर उस चीज को लेके बहुत सारी चीजें जो मैंने झेली थी, बहुत सारी चीजें जो लोगों ने मुझे बोली थी, वो सब कुछ वहां मैंने उस कहानी में कहा। और बहुत सारे लोग उसके बाद, बहुत सारे लोगों के मुझे कॉल्स आए, एक दो पॉडकास्ट में पॉडकास्टर्स ने मुझे बताया कि वो भी उस दौर से गुजरे हैं। एक एक दो दो बार फेल होना या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगातार फेल हो जाना 3 बार, वो सब उस स्टिग्मा से बहुत लोग गुजरे हैं। उसको सही वॉइस नहीं मिली है अभी तक, वो निकल के नहीं आया, कथारसिस नहीं हुई लोगों की। तो मुझे लगा ठीक है, मेरी कथारसिस के बहाने मतलब और बहुत सारे लोगों की कथारसिस हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अनुभव हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कड़वे हैं, अगर अंदर रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक जगह पाके निकल जाते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो इस पूरे दौर से निकले आप कैसे और फिर आगे चीजें कैसे बढ़ी?
1: ये बहुत मतलब फिक्शनल साउंड करेगा, लेकिन हम लोगों के वहां उसको सेकंड ईयर बोलते थे फेल होने के बाद।
0: अच्छा,
1: सेकंड ईयर।
0: ये एक तरह की राहत,
1: एक तरीके की राहत थी। तो मेरा जो सेकंड ईयर था उसमें पता नहीं कैसे मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बन के भी निकला, जबकि मैं पढ़ भी नहीं रहा था।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब अब खोने के लिए कुछ था ही नहीं ना।
0: हाँ बिल्कुल।
1: तो घबराहट नहीं थी।
0: हाँ,
1: तो अब मैं ज्यादा खुल के मजे कर रहा था क्लास में।
0: हाँ,
1: क्योंकि ये सब मेरे से छोटे थे, मेरे क्लासमेट्स, दिमाग में तो यही था। तो अब मुझे जो घबराहट थी, जो बेचैनी थी पिछले साल अपने साथ के लोगों के साथ में, वो बेचैनी पता नहीं कहीं गायब हो गई। तो जैसे मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ में सबसे कम मार्क्स आए थे मेरे सेकंड ईयर में, इन तीनों में मैंने टॉप किया। और हमारे यहाँ 7-8 सेक्शंस होते थे। तो केमिस्ट्री टीचर का तो मैं मतलब बहुत ऐसा प्रिय छात्र बन गया था, क्योंकि मोल थ्योरी ये वो पता नहीं कैसे मुझे समझ में आने लगी चीजें। तो 9th और 10th यूं करके निकल गए, मतलब छुटकी बजाते 9th और 10th निकल गए। मैं रैंक्स अच्छे ला रहा था, मेरी लाइब्रेरी बहुत बड़ी हो गई थी इस बीच में।
0: अच्छा।
1: हाँ, मेरी लाइब्रेरी हमारे शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में से एक थी। मैं मतलब 14 साल के बाद जब मैं भिलाई एक बार गया था, मेरी लाइब्रेरी की सील लगी हुई किताबें मैंने रद्दी में खरीद के वापस लाए थे। इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी कि 14 साल तक वो किताबें सर्कुलेट हो रही थी उसी शहर में।
0: क्या बात।
1: हाँ, तो ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी, मेरी लाइब्रेरी बड़ी हो गई। मेरे फादर का काम मैंने बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था। तो वो एक और बेशर्मी भी आ गई थी, चमड़ी मोटी हो गई ना आपकी, आप जितना सुन सकते थे, जितना झेल सकते थे आपने झेल लिया था। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बहुत मददगार साबित हुआ मेरे लिए, कि वो फेलियर उस समय के लिए तो मौत थी, मगर अगले 1-2 साल के अंदर अंदर मुझे लगता है कि मेरे चरित्र निर्माण में बहुत बड़ा हाथ था उस चीज का।
0: तो नए सिरे से बनने की तैयारी थी
1: जी, वो मुझे लगता है थोड़ा सा प्रतिशोध की ज्वाला भी थी।
0: बिल्कुल। ये कॉमिक्स वाला वर्ड आ गया।

0: पहली किताब, हाँ किशोर की ज्वाला थी वो, और वो सब मेरे लिए काम कर गई बेसिकली।
1: तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। यहाँ एक गाना सुनते हैं।
0: जी बिल्कुल।

0: मुंबई कैसे आ गए आप लोग?
1: हाँ, ये बहुत लंबी कहानी है।
0: अच्छा,
1: तो मैं कॉमिक्स में काम करना चाहता था, लेकिन जब तक मैं 20 का हुआ तब तक भारत में कॉमिक्स खत्म हो गई थी
0: धीरे धीरे।

0: मेरी मेरी पीढ़ी मेरे ख्याल से कॉइंस पढ़ने वाली आखिरी पीढ़ी थी. अभी लोग आ रहे हैं वापस, लेकिन उस समय तो सब खत्म हो गया था. सो जब मैं 20 का हुआ और मैंने मेरा कॉलेज खत्म किया, कॉलेज भी मैंने मजबूरी में खत्म किया था, मेरा मन नहीं था कॉलेज करने का. मतलब 12वीं आते आते तक मुझे समझ में आ गया था कि ये शिक्षा प्रणाली मेरे लिए तो नहीं बनी है. बहुत लोगों के लिए बनी है, मैं शिक्षा प्रणाली के खिलाफ नहीं हूं, मगर मेरे लिए नहीं थी वो. क्योंकि अब मैं जब स्कूल के बारे में सोचता हूं तो मुझे उनकी कहानियां याद है, मुझे कुछ भी याद नहीं उन्होंने मुझे क्या पढ़ाया. तो शिक्षा प्रणाली से मेरा थोड़ा सा मैं उखड़ चुका था 12वीं करते करते तक, और मुझे लगा कि मैं खुद पढ़ सकता हूँ. मेरे लिए जब तक मैं कोई चीज को खुद करके ना देखूं, मेरे लिए सीखना बहुत मुश्किल है. तो मैं घर आके किताबों को पढ़ के खुद से अपनी थ्योरीज बना के किया करता था चीजें. कार्टून्स छप रहे थे लेकिन मुझे मजा आना बंद हो गया था कार्टून्स में. मुझे एक अवार्ड मिला था आर के लक्ष्मण से.
1: अच्छा.
0: तो हाँ, ये उसी स्कूल और कॉलेज के बीच में दो बार मिले थे नेशनल अवार्ड्स. तो उसमें एक बार आर के लक्ष्मण ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा प्लान बी क्या है. तो मुझे समझ में नहीं आया. मैंने कहा प्लान बी क्या होता है. तो उन्होंने बोला अगर कार्टूनिंग में नहीं हुआ तो क्या करोगे. तब तक मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या करना है. तब तक मुझे पता था मुझे यही करना है. तो ये बड़ा कठिन सवाल मेरे सामने आया, और वही आर के लक्ष्मण अगर फेंक रहे हैं वो सवाल आप पे, तो आपको उसको सीरियसली लेना पड़ेगा.
1: बिल्कुल.
0: तो बहुत गंभीरता से मैंने इस पे विचार किया. मुझे ये समझ में आया कि पॉलिटिकल कार्टून्स की उम्र नहीं होती. सुबह छपता है, शाम तक बासी हो जाता है, खत्म हो जाता है. और मेरे बहुत सारे दोस्त ये कर रहे थे. मैं ये करना चाहता था. मैं अखबारों के ऑफिसेज जाता था, कार्टून्स देख के आता था. कभी छप जाते थे, कभी नहीं छपते थे. कभी कोई अखबार वाला कॉल कर देता था कि इतना 3 कॉलम बचा हुआ है, कुछ ड्रॉ करके दे दे जल्दी से.
1: अरे,
0: तो 3 कॉलम का फटाफट कुछ ड्रॉ करके दिया, उन्होंने 50-60 रुपए दे दिए. तो ये चल रहा था. इसको बहुत लोग संघर्ष बोलते हैं, हमारे लिए बहुत मजे का काम था. क्योंकि एक ही सड़क पे सारे अखबारों के ऑफिसेज होते थे. यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, कहीं ना कहीं छप जाता था. और कुछ दोस्त थे जो परमानेंट जॉब में लग गए थे इन अखबारों में, वो अभी भी उन अखबारों के साथ काम कर रहे हैं. मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे पत्रकारिता करनी चाहिए. लेकिन पता नहीं, मेरा मन नहीं लगता था. मेरा मन उन शहरों में नहीं लग रहा था जहां मैं बड़ा हो रहा था. मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहां से निकलना होगा और मैं कार्टून नहीं बनाऊंगा. मैं बहुत क्लियर था इस मामले को लेकर कि मैं पॉलिटिकल कार्टून्स नहीं करूंगा. इसलिए नहीं कि मुझे उससे कोई दिक्कत है, इसलिए कि 1999 सन 2000 का साल था वो, और देश की हवा बड़ी विचित्र सी थी. दूसरी चीज ये थी कि मैंने देखा कार्टूनिस्ट प्राण की एक लेगेसी है, अनुपम सिन्हा की एक लेगेसी है, ली फॉक की एक लेगेसी है. ये मेरे हीरोज हैं. तो अगर मैं लेगेसी नहीं क्रिएट कर रहा हूं तो मुझे आर के लक्ष्मण बनना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे 50 साल कार्टून बनाने पड़ेंगे. और मुझे ऐसा इतना पेशेंस मेरे में नहीं था, अभी भी नहीं है. हाँ, मतलब मैं लगातार काम कर सकता हूं, लेकिन वो एक शिद्दत के साथ एक ही चीज करते रहना और फिर उसमें किसी दिन जाके एक लेगेसी क्रिएट करना, वो बहुत दूर की कौड़ी है. तो ये बड़ा गलत भी साउंड कर सकता है, मगर मुझे मेरे काम पे बहुत गर्व है. जो भी मैं कुछ करता हूं उससे अटैच भी हूं और डिटैच भी हूं. अटैच हूं जब तक मैं उसको बना रहा हूं, डिटैच हूं द मोमेंट ये मेरे हाथ से मैंने बाहर भेज दिया. उसके बाद मैं उसको पलट के भी नहीं देखूंगा, लेकिन जब तक मैं उसके साथ हूं तब तक मैं उसके साथ पूरी तरह से हूं. तो वो पॉलिटिकल कार्टूनिंग में पॉसिबल नहीं था, वो सोशल कार्टूनिंग में पॉसिबल नहीं था. कॉमिक्स बंद हो चुकी थी. तो उस दौर में मुझे ऐसा लगा एनिमेशन मेरे लिए सबसे मुफीद करियर होगा, और एनिमेशन कुछ नहीं पता था मुझे उसके बारे में. तो मुझे ऐसा लगा कि एनिमेशन सीखने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं घर से पैसे मांग नहीं सकता हूँ. तो अब मुझे कहीं जाके स्टूडियो में किसी जगह पे जाके नौकरी मांगनी पड़ेगी, और वहां जाके मैं एनिमेशन सीख भी लूंगा और मैं एक एनिमेटर बन भी जाऊंगा. तब तो मुझे नहीं पता था कि एनिमेटर कौन होता है, इन बिटवीनर कौन होता है, डायरेक्टर कोई और होता है. मेरे दिमाग में मैं डायरेक्टर था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसको डायरेक्टर बोलते हैं. तो उसकी भी बड़ी लंबी सी कहानी है कि मुझे नहीं पता था लाइट बॉक्स क्या होता है. तो मैं जेरोक्स मशीन वाले के वहां खड़े होकर दुकान में लगातार जेरोक्स करके उसको मूवमेंट देता था ड्रॉइंग्स को. अदनान सामी का एक गाना आया था लिफ्ट करा दे, लिफ्ट करा दे, पूरा एनिमेट किया था जेरोक्स कर करके.
1: अरे
0: वो कहीं मेरे पास रखा है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वो उसके इजी तरीके भी हैं. मुझे डिफिकल्ट तरीके पता थे, क्योंकि मैं आर्टिकल्स पढ़े थे. तो मैं उस तरीके से ही काम कर रहा था. तो एनिमेशन के लिए भी बहुत हाथ पैर मारे मैंने. भारत में एनिमेशन का कोई
1: सिस्टमैटिक मामला नहीं था,
0: स्कोप ही नहीं था, कुछ था ही नहीं. एक फिल्म बन रही थी जो मैं क्लास 9th में था तब से बन रही थी, वो अभी तक बनी नहीं थी. उसका नाम भागमती है. भागमती फाइनली उन्होंने लाइव एक्शन और एनिमेशन मिला के कुछ बना दिया था. मैं तब मेरे ख्याल से ऑलरेडी एनिमेशन में आ गया था तब तक. तो इस तरीके की चीजें हो रही थी, और जो कोर्सेस थे वो बहुत महंगे थे. तो मैं वो नहीं कर सकता था वो कोर्सेस. तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले तो मुझे मेरा गांव छोड़ना.

0: पड़ेगा, तब तक हम उड़ीसा शिफ्ट हो चुके थे भिलाई से, और ये बहुत छोटा सा गांव था, इसका नाम आताबिरा है, मतलब वहां आप आलोक शर्मा आताबिरा लिख के चिट्ठी डालिए मेरे घर आ जाती थी, इतना छोटा गांव था वो। तो उसके लिए उस गांव से निकलना बहुत जरूरी था। उस बीच में गौतम कॉमिक्स नाम की कंपनी शुरू हुई थी जिसने मार्वल और डीसी पब्लिश करना शुरू किया था, तो मैंने अपना बहुत सारा काम उनको भेजा, उन्होंने बोला ये सब कचरा है मेरे पिछले 6-7-8 साल की मेहनत को, उन्होंने बोला ये क्वालिटी हमें चाहिए नहीं। तो अब मेरे मन में ये हुआ कि इनको, मतलब अभी तक तो मैं तुरम कहां था, जो भी भेज रहा था सब छप रहा था, ये अचानक एक कौन आ गया है जो मुझे बोला कि सारा खराब है, हमको ये कुछ चाहिए ही नहीं। तो मैं उनको मिलने गया बैंगलोर, वहां मैंने जाके टेस्ट दिए, तो वो भी एक चीज है कि मुझे टेस्ट वगैरह देने से कोई गुरेज नहीं है, मैं अभी भी देने को तैयार होता हूँ, सैंपल कोई मांगे मुझसे मैं अभी भी सैंपल करने को रेडी रहता हूँ। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट आपका ऑडिशन है ही हमारा,
1: बिल्कुल,
0: बड़े बड़े एक्टर्स अगर माइंड नहीं करते ऑडिशन देना तो मतलब मुझे क्यों इस बात से गुरेज हो कि मुझे ऑडिशन देना पड़ रहा है। तो मैंने वहां जाके फिर फाइनली ऑडिशन दिया, बहुत खींचतान के बाद मेरा काम उनको समझ में आया, उन्होंने मुझे बैंगलोर बुला लिया और मेरा पहला पब्लिश्ड काम मार्वल कॉमिक्स में आया।
1: वाह वाह वाह।
0: तो पहली कॉमिक्स जो मैंने की वो मार्वल कॉमिक्स थी, मैं अनक्रेडिटेड था, मैं इंकर था स्पाइडरमैन इंडिया में। तो स्पाइडरमैन इंडिया अब तो बहुत बड़ा कैरेक्टर बन गया है, 2004 में वो नया नया कैरेक्टर आया था, अब तो स्पाइडरवर्स वगैरह आ गया है, तो वहां से मेरी कॉमिक्स की जर्नी शुरू हुई। लेकिन तब तक मैं समझ गया था कि कॉमिक्स बहुत मेहनत का काम है, मैं लिखना ज्यादा पसंद करूंगा ड्रॉ करने से, क्योंकि बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे चित्र बनाते हैं, उस जगह तो मेरे ख्याल से भारत के और विश्व के सबसे बेहतरीन कलाकार स्टूडियो में थे, तो उनके बीच में जाके 12th प्लेयर बनने का कोई फायदा नहीं है, तो क्यों ना मैं लिखना शुरू करूं। और मैं उनको कहानियां सुनाता था क्योंकि मुझे कहानियों का शौक बचपन से रहा है, तो उनको कहानियां पसंद आने लगी, उन्होंने कहा कि तू लिखना क्यों नहीं शुरू करता है, तू लिखेगा तो हम चाहेंगे कि उन कहानियों पे हम लोग ड्राइंग करें। वहां से थोड़ा सा लिखने की तरफ मेरा रुझान बढ़ना शुरू हुआ, तब तक मार्वल नहीं था, गौतम कॉमिक्स था, गौतम मार्वल के साथ कर रहा था ये चीजें, तो ये आर्टिस्ट ने मुझे बोला, लेकिन तब तक ये हो गया था कि मैं ब्रेक चाहता था उस चीज से, ड्राइंग से, क्योंकि क्या होता है कि किसी चीज को आप बहुत प्यार करते हैं और फिर धीरे धीरे उसकी डेडलाइंस हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे उसमें से ना जो उसका जो आनंद है ना वो पूरा रस
1: निकल
0: जाता है, अब वो काम बन जाता है।
1: yes.
0: या बैंक में है या कॉमिक्स बना रहे हैं, दोनों एक काम हो गया है। तो जब ये हो गया है तो, और बैंक का काम इनफैक्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप बहुत लोगों से मिलते हैं, ये तो बहुत एकाकी काम है, तो ये बड़ा अजीब सा माहौल हो गया था कि जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी, जिसमें मैंने 6-7 साल अपने दिए थे, उसमें से आनंद थोड़ा थोड़ा निकलने लगा था। और मुझे उस बीच में जापानी कॉमिक्स मांगा, जिनको बोलते हैं मांगा, मुझे बहुत पसंद आने लगी, तो मैंने चाणक्य पे एक मांगा बनाना शुरू किया खुद से, और मुझे बोला गया कि मांगा का भारत में कोई भविष्य नहीं है, तो इसको तुम बंद कर दो। तो मैंने कुछ 30-40 पन्ने उसके बना लिए थे, मैंने उसको बंद किया, मैं एक रेडियो स्टेशन गया, FM रेडियो तब नए नए आए थे, जीवन का मेरा पहला अनुभव था कि मैं एक रेडियो स्टेशन के अंदर गया, और उन्होंने ऑडिशन के लिए बुला लिया, मैंने जस्ट एक मेल भेजी थी उनको कि मैं आना चाहता हूँ, ऑडिशन देना चाहता हूँ, उन्होंने ऑडिशन में बुला लिया, मैंने जीवन में उससे पहले कभी कोई रेडियो स्टेशन नहीं देखा था, मैंने वहां जाके विभत्स ऑडिशन दिया, एक बहुत ही भयानक, अभी भी सोचता हूं तो मैं सिहर जाता हूं। मैं एक किरण श्रीधर नाम के आरजे हुआ करते थे, अभी भी हैं, तो मैं अभी भी मतलब कभी कभी किरण को नतमस्तक हो जाता हूं कि उसने मुझे आधे घंटे कैसे झेला था उस स्टूडियो के अंदर, मैं तो नहीं झेल सकता था अगर कोई मेरे जैसी हरकतें करता वहां पे, तो मैंने बहुत खराब ऑडिशन दिया, बहुत ही ज्यादा खराब, मतलब मैं स्टूडियो के बाहर जाते जाते ही समझ गया था कि ये लोग मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन यहां मेरी कहानी में एंट्री होती है विविध भारती की, तो विविध भारती मैंने सुनना शुरू किया मेरे ख्याल से जब मैं 9वीं में फेल हुआ था उसके बाद, क्योंकि रात में छाया गीत और ये सब आते थे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे, थोड़े सुकून वाले गाने होते थे,
1: बिल्कुल,
0: कि रात में आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए था क्योंकि तपता हुआ दिन निकाला है सारे स्कूल से लेके पड़ोस तक। तो वहां मैंने विविध भारती सुनना शुरू किया, जहां मैं आप सबको सुनता था, कमल शर्मा थे आप हैं और बहुत सारे उद्घोषक, मुझे अभी भी याद है आप लोगों का एक होली का कार्यक्रम आया था जो बहुत बहुत मजेदार था, मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा था एक कैसेट में, तो मैं बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करता था, अमीन सायानी साहब को मैं मिमिक किया करता था, तो मुझे लगा था रेडियो में तो मैं जाके मतलब तूफान ही मचा दूंगा, फिर जैसे कार्टूनिंग में मैंने तूफान मचाया हुआ है अपने दिमाग में। तो जब रेडियो में गया और मैंने ये पूरा ऑडिशन खराब कर दिया, खराब करने के बाद जब मैं बाहर निकल रहा था तो जो आरजे थी, जैसा कि होता है, एक कुछ तो गलत इन्फॉर्मेशन गई एकदम फट करके ऑन एयर, और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं ये मन्ना देखी आवाज है। तो उनके जो क्रेडिट्स थे उसमें क्रेडिट गलत गया हुआ था, तो उन्होंने बोला पक्का, मैंने

0: आप चेक कर लीजिए, इंटरनेट था, उन्होंने तुरंत चेक किया, उन्होंने तुरंत मिस्टेक करेक्ट किया। और उसके बाद वो मना दे पर कार्यक्रम था और मैंने उनको लगातार ट्रिविया देना शुरू किया, वो प्रोग्राम ठीक हो गया। अब उनको लगा कि ये तो ठीक है, आया था
1: काम
0: ऑडिशन
1: का
0: देने
1: आदमी
0: लेकिन आदमी काम का
1: हाँ
0: है। लेकिन वो 6 महीने तक मुझे हायर नहीं कर सकते थे ऑडिशन में, अगर आपने गड़बड़ कर दी, उनका कुछ तो रूल था, वो 6 महीने तक हायर नहीं कर सकते थे। तो मैंने 6 महीने ऐसे उंगलियों पे गिने, 6 महीने मुझे पता है मैंने कैसे गिना है। और मैंने ये भी दिमाग नहीं लगाया कि 6 महीने ऐसे नहीं होता है, 6 महीने वर्किंग डेज के हिसाब से होता है। मैंने 6 महीने डेट टू डेट लगा के
1: और दिन बढ़ गए इसके बाद।
0: नहीं, कम हुए, क्योंकि वर्किंग डेज के हिसाब से तो 6 महीना अगर काउंट करेंगे तो वो 7 महीना हो जाता है, सैटरडे संडे हटा के, नेशनल हॉलीडेज हटा के। मैंने वो गिने ही नहीं, जस्ट जिस दिन 6 महीने पूरे हुए मैं बैठा, मैंने कॉमिक्स बनाई एक पेज की कि मैंने क्या क्या गड़बड़ किया रेडियो में आपके यहाँ आके, लेकिन मुझे दूसरा चांस चाहिए। वो कॉमिक्स बना के मैंने प्रिंट किया एक पेज का और मैंने उनको भेज दिया। तो मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आया कि अच्छा आप कार्टून बनाते हैं। मैंने कहा हाँ, तो आप आके मिलेंगे हमसे। मैं वेट कर रहा था रेडियो स्टेशन से कॉल आएगी, लेकिन ये किसी एड एजेंसी से कॉल थी। वो रेडियो से किसी एड एजेंसी को चला गया था मेरा, मेरी कॉमिक। तो वो रेडियो की जो प्रोग्रामिंग डायरेक्टर थी, उनके हस्बैंड थे, उनकी एड एजेंसी थी, उन्होंने मुझे फ्रीलांस दे दिया। वो
1: वाह।
0: फ्रीलांस निपटाते निपटाते तक मुझे रेडियो से कॉल आया कि अभी 6 महीने पूरे हुए तुम्हारे, अब आ जाओ। तो वो कॉमिक्स की बदौलत मुझे थोड़ा कॉमिक्स का काम मिला, थोड़ा रेडियो को मिला, और मेरा रेडियो में पदार्पण हुआ इस तरह से। और फिर मैंने रेडियो शोज भी किए। फिर एक वही है ना कि एक फेलियर के बाद जो चमड़ी मोटी हो जाती है, वो
1: करेक्ट।
0: हाँ चमड़ी मोटी हो गई। तो रेडियो शोज भी किए, प्रोड्यूस किया बहुत कुछ, वॉइस ओवर्स किए, फिर तो शर्म भी झिझक भी चली गई माइक के
1: बिल्कुल।
0: सामने की। तो इस तरह से रेडियो का करियर शुरू हुआ मेरा।
1: यहां एक गाना सुनते हैं
0: लिफ्ट करा दे।
1: अदनान समी आवाज।

0: था इस कार्यक्रम का पहला भाग। इसका दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले।
1: आज के मेहमान।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित है, मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। लोकसभा की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन दुखद परमाणु हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
1: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमश 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
0: इसके बाद श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इन्हीं मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। इस दौरान मंत्रियों ने सदन के पटल पर कई दस्तावेज रखे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक

0: विषयों पर ही बोलने की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सदस्य अपने विचार स्वतंत्र रूप से रख सकता है, लेकिन ये व्यवस्थित और सार्थक ढंग से होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। मौसम विभाग ने बताया है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्णाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य सभी 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश होने की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिलों में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट तथा राज्य के अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण चमोली और बागेश्वर जिलों में आज 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों का जल स्तर घटा है। हालांकि तेज बारिश के कारण भुवनेश्वर के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य में फिर से तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास का काम जारी है। प्रशासन ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ से तबाही के बाद सामान्य स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता, पुनर्वास और मुआवजे सहित हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का कल रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे बलिया जिले की रसला विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धरणीधर ने अंतिम दौर में जगह बना ली है। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। आशीष ने पुरुषों के समूह ए में शानदार प्रदर्शन करते हुए 69.87 मीटर थ्रो के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। महिलाओं के डिस्कस थ्रो में अमानत ने 52.58 मीटर का सीजन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए समूह ए में छठा स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: সম্প্রচারিত হল দিল্লি কেন্দ্রের হিন্দি সংবাদ। শ্রোতা বন্ধুরা, এবারে ছায়াগীত অনুষ্ঠানে শুনবেন বাংলা ছবির গান। প্রথম গানটি শুনবেন বলেজারি ছবি থেকে, শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर लोकसभा की कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन दुखद हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं। राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाया। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पर्वती और सीमावर्ती पर्यटन अवसंरचना से जुड़े प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि केंद्र ने राज्यों को प्रमुख साहसिक पर्यटन स्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सलाह दी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायालयों में स्वीकृत पदों और रिक्तियों से जुड़े प्रश्न का उत्तर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर बोलने की अपेक्षा की जाती है।
1: जब काउंसिल की बैठक चल रही हो, कोई भी इस प्रकार की अव्यवस्था, शोरगुल या किसी अन्य तरीके से इस अव्यवस्थित तरीके से बोलते समय किसी अन्य सदस्य के बीच में बाधा नहीं डालेगा।
0: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 13वें दिन में प्रवेश कर गया। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपनी मांगों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच मॉनसून सत्र के पहले दिन झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। बंबई उच्च न्यायालय ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में आज दोषी ठहराया। न्यायालय की गोवा बेंच के जस्टिस नीला गोखले और अमित जमसंदकर की खंडपीठ ने तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की उन धाराओं के तहत दोषी पाया जो विश्वास या अधिकार के पद पर रहते हुए दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला करने से संबंधित हैं। गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अधिकतम सजा देने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे एक कड़ा संदेश जाएगा कि ना का मतलब ना होता है। फैसले के बाद तेजपाल ने कहा कि वो उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रादेशिक सेना पर बात की गई। बैठक में बल को और मजबूत करने तथा इसकी समग्र प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए गए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह

0: ने कहा कि प्रादेशिक सेना नागरिक सैनिक अवधारणा का जीता जागता उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के स्थगन के बाद फिर से शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस वर्ष अब तक देश भर से लाखों श्रद्धालु पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन कर चुके हैं।
1: अब तक 4,70,000 से ज्यादा यात्री पवित्र गुफा का दर्शन कर चुके हैं। हर दिन हजारों की तादाद में यात्री, जिनमें मर्द, औरतें, बच्चे वगैरह शामिल है, इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। फिलहाल यात्रा सिर्फ बालतल के रास्ते से ही जारी है, क्योंकि पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम चल रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए सुरक्षा बलों, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, प्रशासन और आम शहरियों की सराहना की है। याद रहे, ये यात्रा 28 अगस्त को सम्पन्न होगी। से इश्फाक शाह।
0: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। भारतीय हॉकी ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन में होने वाले AHF जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की है। टीम में दो खिलाड़ियों को विकल्प के तौर पर रखा गया है। मिडफील्डर खैदम शेलेमा चानू टीम की कप्तानी करेंगी। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धारणीधर ने फाइनल में जगह बना ली है। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Lok Sabha has been adjourned till tomorrow following opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the House met at 11 a.m., the Lok Sabha paid tributes to the victims of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. The Lok Sabha Speaker Om Birla stated that today marks 81 years of the tragic atomic bombings in Japan. The House also observed silence in memory of the victims of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. After that, Mr. Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protests. The opposition members were demanding a statement from Union Home Minister Amit Shah on alleged police action during students' protests. The Rajya Sabha has taken up the Appropriation No. 3 Bill 2026 for consideration and return. When the House reassembled at 2:45 p.m. after the second adjournment, Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill. It provides for the authorization of the appropriation of money from the Consolidated Fund of India to meet amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st of March 2023 in excess of the amounts granted for those services for that year. The government has sought over 54,000 crore rupees to meet certain excess expenditure. It will be spent on repayment of debt. Defence Minister Rajnath Singh today chaired a meeting in New Delhi of the Parliamentary Consultative Committee for the Ministry of Defence focused on the Territorial Army. Addressing the meeting, Mr. Singh said the Territorial Army is a living embodiment of the citizen-soldier concept. He said while its members engage in civilian pursuits, they simultaneously don the uniform to safeguard the borders and maintain internal security. Mr. Singh acknowledged their role in carrying out relief and rescue work and providing medical aid to those in need during the Kerala floods, Odisha cyclone, and the recent floods in Assam. The Bombay High Court today convicted former Tehalka editor Tarun Tejpal in the 2013 sexual assault case involving a former junior colleague. A division bench of Justices Neela Gokhale and Amit Jamsandikar of the Bombay High Court's Goa bench convicted Tejpal under provisions of the Indian Penal Code related to rape by a person in a position of trust or authority, sexual harassment and assault with intent to disrobe a woman. During the hearing, Tejpal sought leniency, describing himself as a political victim and the father of two daughters. The case stems from allegations made by a former junior colleague who accused Tejpal of sexually assaulting her.

0: कहानी पद्मश्री की, तो इसमें हम आज बात करेंगे कोलक कैल देव की अम्मा, जो कि पर्यावरणविद हैं, यानी पर्यावरण की रक्षा कह समझ लीजिए। तो देव की अम्मा के दादाजी जो थे वो एक वैद्य थे, उनका देव की अम्मा के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव था और उन्हीं की वजह से देव की अम्मा में पर्यावरण के प्रति प्रेम जागृत हुआ। उनका विवाह हुआ गोपाल कृष्ण पिल्लई से, जो एक अंग्रेजी के शिक्षक थे। उनके परिवार में सभी महिलाओं को कृषि कार्य करना अनिवार्य था।
1: और देव की अम्मा 1980 तक अपनी सास के साथ धान की खेती में सहयोग करती रहीं। जब उनके पैर में चोट लग गई और उन्हें चलने फिरने से मना कर दिया गया, उसके 3 साल बाद उन्होंने अपने घर के पीछे एक पौधा लगाया और इस तरह उनकी बागवानी की शुरुआत हुई।
0: बिल्कुल। और केरल के अलप्पुझा जिले में उनके घर के आंगन में उन्होंने थोड़े ही समय में एक हरा जंगल उगा लिया था। देव की अम्मा याद करते हुए कहती हैं कि मैं पहले धान की खेती बड़े चाव से करती थी, लेकिन दुर्घटना के बाद मैं लगभग 3 साल तक बिस्तर पर पड़ी रही और मुझे धान की खेती छोड़नी पड़ी, लेकिन इससे मुझे एक और महत्वपूर्ण काम करने का मौका मिला।
1: परिवार के सदस्यों की मदद से मैंने 35 साल पहले पौधे लगाना शुरू किया था। तब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये जगह जो है वो जंगल बन जाएगी। उनके पति और परिवार ने उनका मनोबल बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। उनके पति हर दिन उनके लिए बीज और पौधे लाते थे। आज भी उनके परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और दोस्त उन्हें नियमित रूप से पौधे और बीज भेंट करते हैं।
0: बहुत बहुत ही अच्छी बात है। एक इतनी अच्छी चीज की शुरुआत करिए ना, कि बीज और पौधे देना मतलब कि आप पूरी प्रकृति को सुरक्षा दे रहे हैं। और देवकी अम्मा कहती हैं कि वन संरक्षण में मुझे अपने बच्चों, पोते पोतियों और उनके बच्चों से भरपूर सहयोग मिलता है और वो इसमें बड़ा योगदान देते हैं और वन की सर्वोत्तम तरीके से रक्षा करना चाहते हैं। उनकी पोते पोती छुट्टियों के दौरान उनसे मिलने आते हैं और उनके इस नेक काम में पूरे उत्साह से उनकी मदद करते हैं। उनसे प्रेरित होकर उनकी एक पोती ने पढ़ाई के लिए वनस्पति विज्ञान को चुना ताकि देवकी अम्मा के इस नेक काम में वो योगदान दे सकें।
1: और उनकी बेटी प्रोफेसर डी थैंकमणि, जो तिरुवनंतपुरम इंजीनियरिंग कॉलेज में पर्यावरण विभाग में प्रमुख हैं, कहती है 4 पीढ़ियों ने मेरी माँ के वृक्षारोपण के इस सफर में अपना योगदान दिया। स्कूल की छुट्टियों के दौरान अम्मा की पोती पोते और उनके बच्चे पुराने पौधों की स्थिति देखने और नए पौधों को लगाने के लिए घर आते थे और वो कहती है कि वृक्षारोपण को लेकर जो उत्साह और उमंग होती है वो किसी त्यौहार जैसी होती है। पर्यावरण संरक्षण को अपना लक्ष्य मानते हुए देव की अम्मा पेड़ पौधों को उगाने और उनकी देखभाल करने के लिए केवल हरी जैविक

0: खाद का ही उपयोग करती हैं। उनके इस जंगल में सागौन, महोगनी, इमली, आम, चीड़, बांस और उनके जैसे तमाम, करीब गिनती नहीं कर सकते लेकिन अधिक से 3000 से भी अधिक वृक्ष वहां पर हैं।
1: बिल्कुल। और लक्ष्मी थारू, चीनी संतरा जैसे कुछ दुर्लभ पौधे भी पाए जाते हैं। प्रचुर मात्रा में फल, सब्जियां और फूल देने वाले 200 विभिन्न प्रकार के वृक्षों और झाड़ियों के अलावा इस जंगल में तालाब, एक आर्द्र भूमि और गाय, भैंस, बैल जैसे पशु भी हैं। और देवकी अम्मा अपने काम पर गर्व करते हुए कहती हैं, पक्षियों और जानवरों को जाल लगाकर प्रतिबंधित करने के बजाय मैंने उनके लिए पानी और घोंसले की व्यवस्था की है।
0: परिणाम स्वरूप हम जंगल में मोर, बंदर और अमूर बाज, नील गाय, काला पंख वाला स्टिल्ट और पन्ना कबूतर जैसे विदेशी पक्षी भी देख सकते हैं। पर्यावरण के क्षरण को रोकने और प्रदूषण को कम करने के लिए वो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की आवश्यकता पर जोर देती हैं और कहती हैं पेड़ लगाना सबसे प्रभावी और व्यवहारिक विकल्प है।
1: बिल्कुल। उनका कहना है, हमारा परिवार पिछले 4 दशकों से पेड़ लगाकर कार्बन

0: पंख वाला स्टिल्ट और पन्ना कबूतर जैसे विदेशी पक्षी भी देख सकते हैं। पर्यावरण के क्षरण को रोकने और प्रदूषण को कम करने के लिए वो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की आवश्यकता पर जोर देती हैं और कहती हैं पेड़ लगाना सबसे प्रभावी और व्यवहारिक विकल्प है।
1: बिल्कुल, उनका कहना है हमारा परिवार पिछले 4 दशकों से पेड़ लगाकर कार्बन फुटप्रिंट को कम कर रहा है। उन्होंने जल समस्याओं से निपटने के लिए वर्षा जल संचयन की सुविधा भी उपलब्ध कराई है और अब ये वन एक शैक्षिक और पर्यटन स्थल बन गया है। बड़ी संख्या में वनस्पति विज्ञानी, पर्यटक, शोधकर्ता, छात्र देवकी अम्मा से सामाजिक वानिकी के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आते हैं
0: और देवकी अम्मा उन्हें विभिन्न वृक्षों के बारे में बताती हैं, उन्हें उनके महत्व को समझाती हैं और सतत उपयोग एवं विकास के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के तरीके बताती हैं। अनुरोध करने पर देवकी अम्मा जरूरतमंदों को पौधे भी उपलब्ध कराती हैं। उम्र के कारण अब वो नए पेड़ नहीं लगा सकती हैं और न ही जंगल की देखभाल कर सकती हैं।
1: बिल्कुल, और लेकिन पेड़ों से जुड़ाव बनाए रखने के लिए वो नियमित रूप से टहलने जरूर जाती हैं। उनकी बेटी ठेंकमणी कहती हैं 5 एकड़ जमीन की देखभाल करना आसान काम नहीं है, लेकिन हर सुबह वो 5 मिनट के लिए ही सही टहलने जरूर जाती हैं। क्योंकि वो बहुत कम ही पौधे लगा पाती हैं, इसलिए वो पेड़ों से बातें करती हैं। इस तरह उन्हें जंगल की उपेक्षा का एहसास नहीं होता।
0: और देवकी अम्मा को उनके समर्पण और अथक परिश्रम के लिए अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार और नारी शक्ति पुरस्कार, उन्हें राज्य सरकार द्वारा भी कई पुरस्कार प्राप्त हैं जैसे वन मित्र पुरस्कार, हरि व्यक्ति पुरस्कार और स्वदेशी विज्ञान पुरस्कार, भूमित्र पुरस्कार और साथ ही अलापुझा जिले का सामाजिक वानिकी पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुआ है।
1: और पर्यावरण के प्रति उनके 4 दशकों के समर्पित योगदान को मान्यता देते हुए बेटर इंडिया ने 2019 में उन्हें हम सभी को बचाने वाले 10 नायकों में से एक के रूप में भी शामिल किया था और अब 2026 में देवकी अम्मा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
0: देखो क्या कितनी अच्छी सी उन्होंने ये चीज करी कि पौधे लगाने शुरू किए और उनकी इस कहानी से हम सभी को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी आसपास की जगहों को हरा भरा रखें, पेड़ पौधे लगाएं, जिससे कि हमारा जो गांव है, हमारा घर है, शहर है, उसके आसपास का सभी वातावरण बहुत खूबसूरत
1: हो सके। और ये देख के भी अच्छा लगेगा ना कि कितना रचनात्मक कार्य हमने किया है कि देखो जो बीज बोए थे, जो छोटे छोटे से पौधे लगाए थे, वो कितने बड़े पेड़ बन गए।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। तो चलो एक गीत सुनते फिर आगे बढ़ते हैं।

0: मंजरी, डोर से तो प्यार की बंद जाते हैं ना?
1: बिल्कुल बंद जाते हैं, क्योंकि प्यार चीज ऐसी है कि वो हर को अपने आप में बांध लेता है, और जब जहां पर पेड़ पौधों से प्यार होता है तो उसका अलग ही, उसकी अलग ही बात होती है। और जो हमारी जो कलाएं होती हैं उनका भी एक अलग रंग होता है,
0: बिल्कुल,
1: है ना?
0: और जो हमारी परंपरागत जो कलाएं थी ना, वो आज थोड़ी बहुत ऐसे हो रहा है ना कि लुप्त सी होती जा रही है। कुछ कलाएं ऐसी हैं जो लुप्त सी होती जा रही हैं, और उनको सहेजना बहुत जरूरी है,
1: बिल्कुल,
0: जिससे कि हमारी जो पहचान है वो बनी रहे।
1: बिल्कुल।
0: तो आज हम बात कर रहे हैं ऐसी ही कुछ कलाओं की जो लुप्त हो रही हैं, और पूरी दुनिया से हमारा देश अलग ही इसीलिए है क्योंकि ये जो है वो विविध तरीके की संस्कृतियों और समृद्ध परंपराओं का देश माना जाता है, और इस सांस्कृतिक ताने बाने के केंद्र में हमारी समृद्ध लोक कलाएं हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। हालांकि आधुनिकीकरण की जो इस समय दौर चल रहा है उसमें उसकी तेज गति के बीच में इनमें से कई पारंपरिक कलाएं विलुप्त होने के खतरे का सामना भी कर रही हैं, और इस देश के हर क्षेत्र और समुदाय ने अपनी एक विशिष्ट कला को जन्म दिया है, चाहे वो मधुबनी हो चित्रकला, और या फिर वारली कला, पट्टचित्र, फड़ चित्रकला, कठपुतली, मिट्टी के खिलौने, हथकरघा, बुनाई, लोक नृत्य, लोक संगीत और बांस बेत की शिल्पकला जैसी अनगिनत कलाएं हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। लेकिन आज समय के बदलते प्रवाह में ये पारंपरिक कलाएं धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पर पहुंच रही हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आरती तुमने। और इसी के साथ ही कश्मीर की जटिल लकड़ी की नक्काशी से लेकर बंगाल और उड़ीसा के जीवंत पट्टा चित्रकला, हर एक कला के रूप में अपने साथ सदियों का एक इतिहास है, उनका परंपरा और कहानी अपने अंदर समेटे हुए हैं। फिर भी जैसे जैसे शहरीकरण फैलता जा रहा है, हमारी सदियों पुरानी विरासत और उनके जीवन के पारंपरिक तरीके लुप्त होते जा रहे हैं। और जैसे कि पट्टाचित्र, जो कि उड़ीसा की एक लोक कला है जिसमें कपड़े या कैनवास पर जटिल डिजाइन बनाए जाते हैं, इन चित्रों के विषय अक्सर पौराणिक कथाओं से प्रेरित होते हैं और रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाते हैं। पट्टाचित्र चित्रों की जो अनूठी विशेषता होती है, और इनमें पौधों और खनिजों से बने प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है जिससे ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं।
0: बिल्कुल, ये पर्यावरण को, देखो जो परंपरागत हमारी जो कलाएं थी पर्यावरण के अनुकूल हुआ करती थी, लेकिन संरक्षण की कमी और घटती मांग के कारण ये कला विलुप्त होने के कगार पर है। और बिदरी वेयर, जो कि एक धातु शिल्प है जिसकी उत्पत्ति कर्नाटक के बीदर में हुई थी, इससे इसमें क्या होता है कि जस्ता और तांबा के काले मिश्र धातु पर चांदी या पीतल के तार जड़े जाते हैं, और जटिल डिजाइन और पैटर्न तेज छेनी की सहायता से धातु पर उकेरे जाते हैं। बिदरी वेयर का उपयोग परंपरागत रूप से बर्तन, आभूषण और सजावटी सामान बनाने में किया जाता था। हालांकि श्रम साध्य प्रक्रिया और कच्चे माल की उच्च लागत के कारण ये शिल्प भी अब कुछ ही कारीगरों द्वारा किया जाता है।
1: और इसके साथ ही सुजनी, जो कि बिहार की एक कढ़ाई कला है जिसमें सूती कपड़े पर रंगीन धागों से ज्यामितीय पैटर्न बनाए जाते हैं, ये शिल्प परंपरागत रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता था और रजाई और चादरों को सजाने का एक तरीका था।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार
1: जी, मैं अमर सिंह डील बोल रहा हूँ, दिलवाली पटा छबड़ा राजस्थान से।
0: क्या हाल है आपके राजस्थान के?
1: बढ़िया ठीक ठाक है दीदी।
0: श्रावण का महीना आ गया है, भगवान शिव की आराधना का समय है, हरियाली और ये प्रमुख त्योहारों का समय आ गया है कि पवित्र महीना आ गया है। राजस्थान में बरसात हो रही है या नहीं?
1: रात तो हो रही थी बरसात।
0: अच्छा,
1: बरसात हुई रात को। अभी तो मतलब बढ़िया फसल है यहाँ पर तो।
0: हाँ,
1: हम तो खेती किसान करते हैं।
0: अच्छा, तो फसल को अच्छा हो रहा है ना फायदा?
1: हाँ, बढ़िया फायदा हो रहा है, बढ़िया पानी गिर रहा है।
0: आपके खेत में कौन सी फसल है?
1: अपने तो मक्का है, सोयाबीन है।
0: तो मक्का और सोयाबीन तो पानी ज्यादा मांगता है ना?
1: पानी इतना गिर रहा है जो पानी फसल के लायक तो गिर रहा है पानी।
0: तो अच्छी तादाद में मक्का और सोयाबीन की खेती होने वाली है इस बार आपके यहाँ?
1: जी बढ़िया होने वाली है, बार किसी बढ़िया फसल दिख रही है और साल किसी बढ़िया है बार।
0: अच्छा, आप महसूस कर रहे हैं कि सावन का मौसम आ गया है?
1: जी कर रहे हैं दीदी, बहुत बढ़िया लगता है सावन का महीना, हरियाली हरियाली।
0: तो आपका खेत खलियान तो बहुत ही सुंदर लग रहा होगा बरसात को।
1: हाँ, बहुत
0: पानी
1: सुंदर
0: को
1: लग रहा है। अभी मैं मक्का खेत में कॉल किया मैंने।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो कभी आपके पास तो मोबाइल है, आप मोबाइल से प्रोग्राम सुनते होंगे हमारे?
1: हाँ दीदी, मोबाइल ऐप पर सुनता हूँ मैं तो।
0: तो कभी इस मोबाइल से फोटोग्राफी करते हैं अपने खूबसूरत हरे भरे खेत की और उन्हें कहीं भेजते हैं आप कि देखिए ऐसी हरियाली है?
1: भेजते हैं दीदी, हमारे दोस्तों के पास, कई दोस्त हैं उनके पास भेजते हैं।
0: तो आपको उनका रिस्पांस मिलता है, उत्तर आता है कि अरे वाह क्या बात है?
1: हाँ उत्तर आता है दीदी, कॉल भी बात होती है हमारे रेडियो से, दोस्त जुड़ रहे हैं जो सबसे मतलब ग्रुप जुड़ रहा है अपना।
0: अच्छा, रेडियो के जो श्रोता वर्ग है उनसे आपकी दोस्ती है?
1: जी जी,
0: बहुत अच्छी बात है। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं?
1: दीदी आज हमें सुनना है हमको तुमसे प्यार है, इस पिक्चर का नाम है, गाने की बोल है तेरी इश्क में पागल हो गए दीवाना तेरा रे।
0: सुनिए अपनी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते,
1: कैसे हैं मैडम आप?
0: बहुत अच्छे हैं, आप बताइए।
1: मैं भी अच्छी हूँ मैडम।
0: अपना नाम बताइए मुझे।
1: मैं अमीना भी मंसूरी बोल रही हूँ, पालदाना का इंदौर से।
0: स्वागत है आपका, बताइए क्या करती हैं आप?
1: मैं कुछ भी नहीं करती मैडम, घर ही रहती हूँ, बच्चे जाते हैं काम पर।
0: तो आप घर के काम करती हैं फिर?
1: हाँ, घर पर थोड़ा बहुत बटा लेती हूँ काम, बच्चे काम करने नहीं देते पहली बात।
0: क्या बात है, इसका मतलब बच्चों का लालन पालन आपने बहुत अच्छे तरीके से किया है।
1: जी मैडम, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं मैडम, मेरे को काम नहीं करने देते, ना बाहर जान देते ना घर भी नहीं ज्यादा काम करने देते मेरे को।
0: अच्छा एक बात बताइए, अभी श्रावण का महीना शुरू हो गया है, पता है ना आपको?
1: जी मैडम।
0: तो कभी आप कुछ गाती हैं इस महीने में? मन करता है कि घर में बैठी हूँ तो कुछ गीत गाए जाएं, कुछ लोकगीत गाए जाएं, या कोई ऐसा गीत जो श्रावण मास से जुड़ा हो?
1: मैं तो पहले गा लेती थी, लेकिन अभी थोड़ा तबीयत बीच में खराब हो गई थी, जब से गुनगुना लेती हूँ थोड़ा बहुत, जैसे गाने आते जब गुनगुना लेती हूँ बस।
0: अच्छा, कोई गीत गुनगुना के बताइए हमें, अगर याद है तो।
1: अपन राग नहीं लगेगी मैडम, थोड़ा सा गुनगुना लेती हूँ बस। इस श्याने करम का क्या कहना, इस श्याने करम का क्या कहना।
0: अच्छा गाया आपने, अच्छा उठाया, कव्वाल की तरह गा रही थी आप, कोई कव्वाल गाता है जैसे, है ना?
1: मैडम आवाज अच्छी नहीं चल रही, नहीं तो गाने पे मैं बहुत अच्छे से गा लेती हूँ।
0: हाँ बताइए, कौन सा गीत सुनवाया आपको?
1: कच्चे धागे का सुना दीजिए।
0: कौन सा गाना? यही गाना।
1: हाँ, इस श्याने कर्म का क्या कहना।
0: चलिए सुनते हैं ये गीत आपकी पसंद का।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी नमस्कार मैम।
0: अपना नाम बताइए। नमस्कार,
1: मैं बीरन धाकड़ बोल रहा हूँ, बड़ा गांव जिला गुना मध्य प्रदेश से।
0: जी कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं। क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी का व्यवसाय है मैम।
0: अच्छा, क्या है इन दिनों खेत में?
1: मक्का है मैम, मक्का, धान, सोयाबीन।
0: और मौसम कैसा चल रहा है भाई? श्रावण मास तो शुरू हो गया है, बरसात आने लगी है।
1: बिल्कुल मौसम अच्छा है, हरियाली हरियाली है।
0: कितना बड़ा खेत है आपके पास?
1: मेरे पास 4-5 बीघा खेत है।
0: तो आप और आपके परिवार के अन्य लोग खेत की रखवाली करते हैं, काम करते हैं, या आप अकेले ही?
1: नहीं मैम, हमारा पूरा परिवार खेती बाड़ी का ही व्यवसाय है हमारा। तो
0: पशुधन भी है?
1: काम करते हैं।
0: पशुधन भी है?
1: जी जी, गाय है।
0: कितनी गाय है?
1: 3-4 गाय है मेरे पास।
0: उनकी भी देखभाल करनी पड़ती है?
1: खेती बाड़ी में चारा होता है उसमें लाते हैं गत्ता बना बना के।
0: अच्छा, वो खा लेती है?
1: जी जी।
0: अच्छा, आप खेत खलिहान में रहते हैं तो बारिश और हरियाली के इस खास माहौल में मोर और पपीहों की आवाज भी आती है? मोर नाचते हैं आसपास, मीठी आवाजें आती हैं?
1: जी जी मैम, पक्षी भी आते हैं और साथ में जो रेडियो विविध भारती को जो साथ है हमारे, बहुत अच्छा लगता है मैम। ये जो गाने आप प्रसारित करते हैं ना, जो विविध भारती से आते हैं, वो हमको मन को छू जाते हैं।
0: क्या बात है, इसीलिए तो आप लोग विविध भारती से जुड़े हुए हैं।
1: जी जी जी, काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ मैं, और हमारे भाई साहब हैं, सब घर परिवार के पूरे सुनते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके कि आप अपने खेत खलिहान में बैठकर विविध भारती के साथ प्रकृति का आनंद भी उठाते हैं।
1: जी मैम, और आज मुझे राजा हिंदुस्तानी का गीत सुनना चाहता हूँ मैम।
0: बताइए।
1: पूछो जरा, पूछो मुझे क्या हुआ है।
0: चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना।
1: मेरा गोपाल ओझा, ग्राम ककवासा, जिला गुना से बोल रहा हूँ। मैडम जी, आपसे पहली बार ही बात हो रही मेरी।
0: अरे, इससे पहले नहीं हुई हमारी बातचीत कभी?
1: नहीं हुई मैडम जी।
0: तो चलिए, आज तो हो गई
1: जी। आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ, विविध भारती से जुड़ा हुआ हूँ बहुत सालों से।
0: अच्छा, कैसे लगते हैं आपको कार्यक्रम?
1: कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगते हैं जी। मान लीजिए विविध भारती के तो हेलो परमाल, सखी सहेली और तिरवेड़ी और सभी कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगते हैं जी, मान लीजिए।
0: अरे वाह, लगातार सुनते हैं या कभी कभी छूट भी चाहते हैं कार्यक्रम?
1: लगातार सुनते हैं हम तो विविध भारती जी, मान लीजिए।
0: अच्छा, क्या बात है। तो आप क्या करते हैं गोपाल जी?
1: खेती करते हैं, अभी तो मक्का लगा रखी है। अभी तो क्योंकि मक्का की फसल आएगी 2 महीने बाद जी, मान लीजिए बारिश भी हो रही है अभी।
0: मक्का की फसल तो पानी मांगती है बहुत ज्यादा
1: जी।
0: इसके बाद क्या लगाएंगे आप?
1: फिर इसके बाद लगाएंगे धनिया, गेहूँ।
0: ये कब पक जाएगी फसल
1: जी? आ जाती है उधर गर्मी तक, आ जाती है होली तक।
0: अच्छा, तब तक तो आपको बड़ी देखभाल करनी पड़ेगी। आपके परिवार के लोग भी लगे रहते होंगे खेतों में? वहीं रहते हैं आप?
1: हाँ, लगे रहते हैं जी, मान लीजिए।
0: खेतों में ही रहते होंगे ना, वहीं पर मकान बना होगा आपका?
1: नहीं नहीं, अभी तो गांव पास में ही है अपना खेत तो जी, मान लीजिए।
0: अच्छा, तो बताइए कुछ खास

0: है, खेत खलिहान को देखकर कैसा महसूस कर रहा है हमारा एक किसान?
1: बढ़िया लग रहा है, यही विविध भारती सुनते या चलता रहता है हमारा तो।
0: हाँ, ये तो बहुत बड़ा साथी है आपकी जिंदगी का।
1: जी
0: बताइए, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आज?
1: रंग फिल्म का सुनना है, कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में, तुम्हें देखे मेरी आंखें इसमें क्या मेरी कटाई जी वाला।
0: अरे कौन सा गाना खूबसूरत उठा के लाए हैं आप, कहाँ से ढूंढ के लाए हैं?
1: मान लीजिए आप 90 की तो सच्ची गीत पसंद करता हूँ मुझे, मान लीजिए हमारे दोस्तों की पसंद का है गाना।
0: चलिए मान लिया हमने, ठीक है, सुनिए अपनी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो मंदाकिनी दीदी को राधे राधे।
0: राधे राधे, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ दीदी, बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: अरे बहुत पहले भी आपसे एक बार बात हो चुकी है हमारी शायद।
1: बिल्कुल,
0: देखिए हम अपने श्रोताओं की आवाजें भी पहचानने लग गए हैं।
1: आपका कार्यक्रम दीदी सुनते रहते हैं हम तो, बहुत अच्छी आवाज लगती है और आपको जो नॉलेज है जनरल नॉलेज वो भी आपका बहुत अच्छा और बहुत परफेक्ट है।
0: ये आप कह रहे हो, आपका बड़प्पन है, आपका स्नेह है।
1: जी दीदी,
0: तो बताइए आपके भोपाल में जहाँ आप रहते हैं मौसम का क्या हाल है, क्योंकि श्रावण मास लग चुका है तो ये खास मौसम जो हमारे जीवन में अभी आया है, आपके वहाँ क्या हाल है और आपके जीवन में इसका क्या असर, ये बताइए हमें।
1: दीदी श्रावण मास का बहुत ही अच्छा असर है और हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है दीदी, बहुत अच्छा, अच्छा मौसम है और श्रद्धालु भी जो शिव मंदिर है वहाँ पर बहुत श्रद्धालु जुड़ रहे हैं और कांवड़ यात्रा भी जा रही है कहीं कहीं पर, बहुत अच्छा लगता दीदी, पूरे महीने बहुत ही अच्छा आनंदमय हो जाता है। सबसे बड़ी ये बहुत अच्छी बात है दीदी कि जो कांवड़ यात्रा जाती है तो जो उन यात्रियों का जो रास्ता रहता है उसको सुगम बनाते हैं श्रद्धालु।

0: जी
1: तन मन धन से उनको जगह जगह पांडाल लगाते हैं, उनको भोजन फलहार की व्यवस्था रखते हैं, जल पानी जो भी चाहिए हो
0: बिल्कुल,
1: तो वो उनके मतलब यात्रा को सुगम बनाते हैं। उनके लिए मैं सब दीदी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।
0: बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप क्या करते हैं फिर, आपकी पसंद का गीत सुनते हैं?
1: मैं आर्टिस्ट हूँ, पेंटर।
0: अरे कौन सी पेंटिंग?
1: मैं ये बॉल पेंटिंग दीवार लेखन जिसे बोलते हैं।
0: अच्छा, तो कभी श्रावण मास की कल्पना की, कुछ महीने का कैनवास पे उतारा उस महीने को कभी?
1: महीने को तो नहीं, लेकिन दीदी इससे तो वास्ता पड़ता ही रहता है।
0: चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक कलाकार हैं और अच्छी अच्छी कल्पनाओं के जरिए जो अपनी पेंटिंग बनाते हैं। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: आज दीदी मूवी का नाम है प्यार का मौसम और गाना है निसुल्ताना रे, उसमें एक अंतरा बहुत अच्छा है दीदी।
2: बलम बबुआ बेदर्दी
0: सावन आया आजा। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत, ये मेरी भी पसंद का गीत है, सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: आपके सब कार्यक्रम अच्छे होते।
0: अरे नाम बताइए,
1: सुनते
0: नाम तो बताइए अपना पहले।
1: नाम मेरा मच्छिंद्र हरदास चांडवले।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: हम अहिल्या नगर से बोल रहे हैं, शिरडी के।

0: बाजू में से
1: स्वागत है।
0: आप सब ठीक है?
1: हाँ बिल्कुल ठीक है, और आपसे बात करके और भी अच्छे हो गए। हमारे असिस्ट होता हमें कहाँ मिलेंगे।
0: तो कैसा है, भगवान की कृपा है।
1: अरे वाह,
0: लग गया हमारा फोन।
1: अच्छा बताइए कैसा मौसम है वहाँ पर, झमाझम बारिश हुई?
0: तो बारिश कल परसों हो गया था। अच्छा
1: हाँ, क्योंकि श्रावण मास लग चुका है, सावन का महीना है,
0: चालू है। कल परसों बारिश हो गया था, अभी आज बारिश नहीं है।
1: मतलब मानसून सक्रिय हुआ कि नहीं?
0: मानसून कैसा है, अहिल्या नगर में बारिश है ना, बम्बई में नारियली पूर्णिमा होती है क्या?
1: हाँ,
0: उसके बाद जो नारल बम्बई में गिरता है, उसके बाद अहिल्या नगर में बारिश आता है।
1: अच्छा,
0: उसको पर्ची का बारिश बोलते।
1: अच्छा,
0: इधर अहिल्या नगर में सह्याद्री के पट्टे नहीं है।
1: अरे बहुत टेक्निकल बात कर दी आपने तो।
0: अभी क्या करते, अभी वो कैसा है, शिरूर सितरापुर तक सह्याद्री के पट्टे आते हैं, तो वो जहाँ मानसून गिरता है, भीमा शंकर, पूना, बम्बई, कोकण, वो भाग में बारिश ज्यादा होता है।
1: समझ गई मैं,
0: इधर बोले तो ये माथे पे।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने, बहुत अच्छे तरीके से बात समझाई हमको कि किस तरह का मौसम
0: रहता है। अभी ये पहले से जो भगवान ने लगाया है,
1: हाँ,
0: रीति रिवाज,
1: हाँ,
0: वो चलते आने वाला है, रीति रिवाज से चलता है, उसकी मर्जी भी अगर कुछ होता नहीं।
1: क्या बात कही,
0: मराठी में एक आभंग है, अरे अरे मानस साधु वेड़ा का खोला रे, देवा पुढ़े मानस पाला पातोला रे, घड़ी घड़ी नहीं कुनाचा भरोसा, तुला कोने देईन मनाचा दिलासा।
1: बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल घड़ी भर का भरोसा नहीं है। तो आपने जिंदगी के अनुभव ले लिए हैं और अब जिंदगी को आप उसी तरह से।
0: मैं तुमको बोलूं कि सिलोन काल का रेडू था, उसके पास वी द्वारती पे आपके जय माला करके कार्यक्रम आते थे
1: जी।
0: अभी तो हेलो गीत बाहर एक ही दिन रहता है, हमारा सवा छेकू भजन संध्या कार्यक्रम लगता है, भक्ति संगीत, हवा महल, हम सब कार्यक्रम आपके सुनते हैं।
1: बहुत सुंदर,
0: हमारा दिनचर्या भी अच्छा जाता है
1: जी। बिल्कुल, तो अब बता दीजिए आपकी पसंद का गीत, हमें कौन सा गीत सुनेंगे?
0: मेरा पसंदीदा गाना है शिरडी के साईं बाबा का।
1: अरे वाह, कौन सा?
0: आया हूँ तेरे दर पे सवाली शिरडी वाले साईं बाबा।
1: बहुत सुंदर, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिमरी कुरासा कॉलोनी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैडम, आप ड्यूटी पीरियड में हूँ मैडम, और ड्यूटी पीरियड में ही मैं आपके कार्यक्रम में कई दिन से फोन कर रहा था, लग नहीं रहा था, लग गया आज, बहुत खुशी हुआ मैडम, बातचीत हो रहा बहुत अच्छा लग रहा है।
0: क्या ड्यूटी पीरियड क्या कह रहे हैं आप?
1: मैं एसएससीएल में सर्विस करता हूँ, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड में सर्विस करता हूँ, और ड्यूटी पीरियड में कई केंद्रों में फोनिंग में, लाइव में, ईमेल में, और सब में जुड़ता हूँ, प्रसारण भी सुनता हूँ, और आपका कार्यक्रम में आज फोन किया मैडम, बहुत अच्छा लगा मेरे को, बातचीत हो रहा है। और आज मैं अपने पसंद के गीत बताता हूँ, फिल्म का नाम है भाग मिल्का भाग, और गीत के बोल है मस्तों का झुंड, और गायक है दिव्या कुमार।
0: चलिए ये गीत तो हम आपको सुनवा देंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी तो एक आध बात तो कर लीजिए हमसे।
1: हाँ आराम से मैडम बोलिए।
0: हाँ आप बताइए क्या करते हैं, मतलब कैसा आपका वक्त निकलता है, मौसम में क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं, आपके शहर में बारिश हुई कि नहीं हुई, क्योंकि सावन का महीना शुरू हो गया है, और हम तो ऐसा मानते हैं कि जब सावन आता है तो हरियाली छा जाती है।
1: जी यहाँ पर मौसम एकदम मैडम अभी बादल किया हुआ है, उमस टाइप की गर्मी है, और मतलब कि हल्का मतलब लाइटिंग बादल किया है, सूर्य की रोशनी है, बादल किया है, लेकिन ये पानी गिरने के कगार में, क्योंकि जब उमस गर्मी होता है मैडम तो पानी गिरता है, लेकिन कोई कहा नहीं जा सकता है कि पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, लेकिन भगवान की मर्जी है तो उस अनुसार ही पानी गिरता है।
0: बिल्कुल, चलिए अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा हमेशा की तरह करबद्ध अनुरोध कि आगामी दो माह तक हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से, और इसके लिए हमारे फोन नंबर नोट कर ले। हमारे फोन नंबर हैं 02228670288, दूसरा नंबर 02240024662। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ, तकनीकी सहयोग समृद्धि नाइक का, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर लेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो
2: हेलो फरमाइश।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, जीवन एक अधूरी कविता सा है ना? ये अधूरापन मन को सालता है, लेकिन लगातार आपका पीछा करता रहता है। कुछ लफ्ज अधूरे रह जाते हैं, कुछ ख्वाब, कुछ सपने, तो कभी कुछ मुलाकातें भी।

0: कुछ इश्क अधूरा रह जाता है और तब कुछ आप अधूरे रह जाते हैं। हाँ, तब कुछ आप अधूरे रह जाते हैं।
1: तेरे बिना जीना लगे।

जब मेरी किताब छपेगी ना तो लोग पढ़ेंगे तुम्हारी हंसी की कहानियां, तुम्हारी नाराजगी के किस्से, तुम्हारी बेरुखी की

अनाक गाथाएं और हां तुम्हारी बेवफाई भी। पर कोई नहीं पढ़ पाएगा मेरा वो खालीपन, वो अधूरापन जिसे मैं हर पल महसूस करती हूं तुम्हारे।

कभी रात के सन्नाटे में जब सारी दुनिया सो रही होती है, तब अधूरी कहानियां जेहन में तैरने लगती हैं। कहते हैं अधूरी मोहब्बत पूरी मोहब्बत से कहीं ज्यादा गहरी होती है। शायद इसीलिए अधूरी कहानियां जिंदगी की किताब में सबसे गहरी लकीर छोड़ जाती है।

सौ अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। उफ, कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती, वे टुकड़ों में मौजूद होती हैं। एक वाक्य अधूरा छूट जाता है, एक कथानक छूट जाता है, और कभी कभी एक नोटबुक अधूरे विचारों से भर जाती है। हाँ, हमें सिखाया जाता है कि हर कहानी का अंत होना चाहिए, पात्रों को अपने अंत तक पहुंचना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। ये पात्र अपने अधूरेपन के साथ पड़े रहते हैं, चुपचाप किसी कागज के कोने में, दिनों, महीनों और कभी कभी तो जीवन भर। लगा

बिसरी हुई अधूरी याद, मुलाकात, चरागाह में खो गई गाय है, हाँ, जो रास्ता तलाशती हुई एक दिन आ जाती है वापस। कोई बिसरी हुई अधूरी याद, मुलाकात, चरागाह में खो गई गाय है, जो रास्ता तलाशती हुई एक दिन आ जाती है वापस। और बंद दरवाजों के बाहर रंभाती है, पर धीरे धीरे ये रंभाना सुनाई नहीं देता है। अपने अधूरे होने का एहसास या अधूरेपन का दर्प जिद्दी बना देता है मन को, तब मन टस से मस नहीं होता अपनी जगह से।

आज जब किताबों की अलमारी खोली तो सामने आई किताब गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती का ये उपन्यास हमने मिलकर पढ़ा था, याद है? तुम्हें कहाँ याद होगा। हाँ, आज फिर एक बार उस अधूरे प्रेम के लिए दिल भारी हो गया है। इश्क का वो पहला खत कभी फाड़ा नहीं गया मुझसे। वो प्रेम, वो जुड़ाव, वो बेबसी हर शब्द जैसे आज भी सांस ले रहा है। अपनी अधूरी प्रेम कहानी की याद दिलाता है ये खत। और हाँ, तब मन को समझा लेती हूं ये सोचकर कि हम सब अधूरे होते हैं एक आस में। हाँ, हम सभी तो अधूरे होते हैं एक आस में।

इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम का यह है पहला गीत। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है दो रास्ते। गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी आपने नाखुदा फिल्म का दो गाना सुना, आवाजें लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की थी, गीतकार थे निदा फाजली और संगीतकार थे खयाम।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म सितारा का गीत। गाने वाले कलाकार लता मंगेशकर और भूपेंद्र थे। इसे गुलजार साहब ने लिखा था और धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: नहीं देखा है तो जाना, नहीं जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम। यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं किसी से भी। हारे नहीं हम

0: किशोर कुमार और साथियों को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था 2 और 2 5। गीतकार थे अनजान और संगीत दिया था राजेश रोशन ने।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: 4 औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: इस वक्त आशा भोंसले और अशोक कुमार के फिल्म का नाम था खूबसूरत। इसे गुलजार साहब ने लिखा था और धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने।
1: पहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की साथी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कि हम तुम चोरी से बंद

0: कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बद्दू।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला, सईद को पकड़ा लिया। और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
3: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: तराने नए पुराने कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे संध्या 6:05 पर हिंदी में समाचारों के बाद। इस समय संध्या के 6 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस प्रोग्राम के प्रायोजक सन खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय भारत सरकार।
4: কৃষকের হাসি দেশের সমৃদ্ধি। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পের মাধ্যমে যোগ্য কৃষক পরিবার বছরে 6000 টাকা আর্থিক সহায়তা পান। তিনটি সমান কিস্তিতে সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। এই সহায়তা কৃষিকাজে নতুন উদ্দীপনা এনে দেয়। এখনও নিবন্ধন না করে থাকলে আজই নিকটস্থ কমন সার্ভিস সেন্টার বা কৃষি দপ্তরে যোগাযোগ করুন। বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন www.pmkishan.gov.in। সচ্ছল কৃষক, সমৃদ্ধ ভারত। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি, কৃষকের পাশে, উন্নয়নের পথে।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से बिजली बिल से मुक्ति और बिजली की बचत के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। आप भी बेहद सरल प्रक्रिया द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और 300 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने पाएं। सौर की शक्ति, बिजली बिल से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए पीएम सूर्य घर.gov.in पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूँ धान का खेती करता हूँ। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको

0: है। तुम भी अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मेरे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
1: रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराए।
2: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
1: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

0: हमारे अन्नदाता जहां एक ओर अपने कठोर परिश्रम से अनाज उगाकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, वहीं पशुपालन के जरिए अपनी आय भी बढ़ाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार इन दोनों क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद की जाती है, जिससे 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को अब तक 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिली है।
1: पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी। उनके छोटे छोटे खर्चों के लिए ये किसान सम्मान निधि बहुत काम आ रही है।
0: पीएम किसान की 18वीं किस्त के रूप में आज प्रधानमंत्री द्वारा 9 करोड़ 40 लाख से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक की धन राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। इसी के साथ नमो शेतकरी महासम्मान निधि की भी 5वीं किस्त जारी की जा चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र के 91 लाख से अधिक किसानों को 2000 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। भारत सरकार की ऐतिहासिक 10,000 FPO योजना के अंतर्गत 9,000 से अधिक FPO का पंजीकरण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, जिनमें करीब 23 लाख मेहनतकश किसान शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2020 में शुरू की गई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत किसानों को 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे विकसित भारत की आधुनिक कृषि अवसंरचना का विकास हो रहा है। वर्तमान सरकार गठन के 100 दिनों के भीतर 6,500 करोड़ की लागत से 10,000 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इसी अवधि में 7,516 परियोजनाएं पूरी हुई, जिसमें 1,929 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि शामिल है। भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देशी नस्ल के गायों एवं भैंस की गुणवत्ता में तेजी से सुधार एवं दूध उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी से देश में श्वेत क्रांति द्वितीय चल पड़ी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से 2 बड़े कदम आज देश को समर्पित किए जा रहे हैं। गौ सॉर्ट स्वदेशी सेक्स सॉर्टिंग तकनीक से बछड़ी पैदा होने की सफलता दर 90% है, जिससे 8 करोड़ डेयरी किसानों को लाभ होगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और ICAR NBAGR के साझा वैज्ञानिक कार्यक्रम से विश्व में पहली बार देशी गाय और भैंस में अच्छे नस्ल की त्वरित पहचान के लिए गौ चिप और महिष चिप नामक जेनोमिक चिप तैयार कर लिए गए हैं, जिनसे नस्ल सुधार कार्यक्रम दुगनी तेजी से चल पाएंगे। ये सुविधा कोई भी किसान NDDB के काफ लैब एवं KLDB के लैब से उचित दाम पर ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कृषि और पशुपालन के समन्वित विकास से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।